मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ उपस्थित है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं वंदना में सबसे पहले समूह स्वर में देशगान।

वंदना में अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनते हैं हरिओम शरण व साथियों की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। लीजिए सुनिए सदाचरण विषय पर डॉक्टर के एस राठौर के विचार। वाचक स्वर राजेंद्र कुमार का है।
1: सदाचरण मानव का वो सर्वोत्कृष्ट एवं दुर्लभ गुण है जो उसे सद्मार्ग की राह दिखाता है, जिसका समाज पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। बच्चा भी अपने माता पिता से स्वभाव तथा आचार्य से आचरण ग्रहण करता है। सदाचरण का बीजारोपण बाल्यकाल में ही सुसंस्कारों के रूप में किया जाता है, जिसका प्रतिफल आजीवन मिलता रहता है। जो प्राणी सामान्य परिवार में उत्पन्न हुआ हो, सत्पुरुषों का सानिध्य सुलभ हो, महान विभूतियों के चित्र भी घर में लगे हों, तो इस अनुकरणीय परिवेश का बालक पर अमिट प्रभाव पड़ता है। बालक तो एक कोरे कागज की भांति होता है। बिखरे संस्कारों को आचार्य जब एक कुंभकार की तरह अपनी शिक्षा रूपी चाक पर ढालता है, तो बालक में सदाचार का जन्म होता है। सदाचारी मानव जिह्वा से कम, जीवन से अधिक बोलता है। तुलसी, कबीर, मीरा, बुद्ध आदि ने सत्प्रेरणा देकर पतितों को उठाया, पथभ्रष्टों को सतपथ दिखाया। मानव का सर्वाधिक महत्व का गुण है मृदुभाषी होना। कड़वे बोलने वाले का मधु भी कड़वा होता है और मीठा बोलने वाले की कड़वी वस्तु भी मधुर होती है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर। सद्व्यवहार करने का कोई व्यय नहीं होता, किंतु मिलता बहुत कुछ है। कोयल की मधुर वाणी सबको भरी लगती है और कौवे की कटु वाणी कर्ण कटु लगती है। महान व्यक्ति के संग का रंग अवश्य चढ़ता है। दुराचारी भी दुर्गुण त्याग कर सदाचारी बन जाता है, जैसे प्रह्लाद के सानिध्य में आकर राक्षस भी सुधर गए। दस्यु रत्नाकर भी सदाचारी संतों के सानिध्य से वाल्मीकि कहलाए, जिनकी आज भी पूजा होती है। महात्मा बुद्ध ने भी अंगुलीमाल की वृत्ति बदल दी और वो सदाचारी मानव बन गया। सदाचरण से ही जीवन की वृत्तियों का परिमार्जन होता है। सदाचरण भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है। सदाचरण को पनपाने में खान पान की भी भागीदारी है। अन्न ब्रह्म है। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा प्रभाव मन पर पड़ेगा। कृष्ण ने दुर्योधन का राजसी भोजन त्याग कर विदुर के घर साग रोटी खाई, जो प्रसाद बन गई। सदाचरण से मन बलिष्ठ बनता है और इच्छा शक्ति का संचार होता है, जिसके बल पर वो घोर परिश्रम द्वारा गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत सदाचार यदि गया, मनुष्य का तो सब कुछ लुट जाता है। सदाचरण एक सुगंध है जो पुष्प रूपी मानव में निहित रहती है। पुष्प को छिपाकर रखा जा सकता है, पर सुगंध को नहीं। सदाचरण की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, जिसके बल पर वो वज्र से भी कठोर हृदयों को द्रवित कर कोमल बना देता है। सदाचार व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। ईर्ष्या द्वेष को त्यागने और सद्व्यवहार की राह दिखाने में सदाचार की महान भूमिका होती है। जो भी संपर्क में आया महान बन गया। गांधी जी के सानिध्य में आकर लोग आज भी समाज को आलोकित कर रहे हैं और उनकी वाणी कोटि कंठों की वाणी बन गई, जो समष्टि के लिए व्यष्टि निछावर कर देने को तैयार हैं। सदाचारी व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। उसकी सत्संगति जीवन की लोहता को स्वर्णता प्रदान करती है। पर पीड़ा से पीड़ित रहकर सदा शुभ चिंतन करता है, वो सच्चे अर्थों में सदाचारी है। सम्राट अशोक ने जब पर पीड़ा को अपनी पीड़ा मानी तो वो पीर बन गया, महान बन गया। विजय ने उसे सम्राट से संत बना दिया। सिद्धार्थ व्यक्तिगत दुखानुभूति से ऊपर उठकर पर दुख से कातर होकर एक दिन भगवान बुद्ध बन गए। आचरण में सुधार का अवसर मिले तभी मानवता के तत्वों को बल मिलेगा और तब हम कुतर्कों और चिंताओं से मुक्त होकर स्वस्थ चिंतन द्वारा मानव जीवन में एक नया सवेरा ला सकेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में डॉक्टर के एस राठौर के विचार। वाचक स्वर राजेंद्र कुमार का था। ये

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी। विषय है जैव उर्वरक का खेती में उपयोग।

0: किसान भाइयों, आज की वैज्ञानिक खेती में हम कई तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता अनुसार हम फसलों में पूर्ति करते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि यदि हम एक संतुलित मात्रा खाद उर्वरकों के प्रयोग नहीं करते हैं तो भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हम जितनी भी कोशिश करते हैं फिर भी आशा के अनुरूप पैदावार फिर नहीं मिल पाती है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए वैज्ञानिकों की सलाह है कि हम समय समय पर जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करें। तो कुछ सूक्ष्म जीवों में पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने की इनमें क्षमता होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने, भूमि में अघुलनशील स्फुर व पोटास जो खनिजों के अपक्षय से बनते हैं उन्हें घुलनशील बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार यानी कल्चर रूप में तैयार किया जाता है और इन्हें ही हम जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक सरल, प्रभावी, प्रकृति अनुकूल और सस्ते होते हैं जिनका उपयोग कर कम लागत में पोषक तत्वों की पूर्ति हम कर सकते हैं। इसमें लाभ यह है कि जैव उर्वरक सस्ते होते हैं, प्रभावी होते हैं और रासायनिक उर्वरकों के पूरक होते हैं। वृद्धिकारक हार्मोन्स, विटामिन और खनिज तत्वों की पूर्ति करने में ये मददगार साबित होते हैं। जैव उर्वरक प्रयोग से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है और पौधों की वृद्धि अधिक होती है। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रसायन रहित और भूमि की उर्वरता बनाए रखने में इनसे मदद मिलती है। जैव उर्वरकों के उपयोग से फसल उत्पादन में 10-20% तक की बढ़ोतरी होती है। अब ये जैव उर्वरक कौन कौन से हैं इनको भी जान लें और किन किन फसलों में इनका प्रयोग हो सकता है। तो एक तो राइजोम कल्चर है जिसे सभी तरह की दलहनी फसलों में इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से जो एजोटोबैक्टर है ये गेहूं, आलू, शकरकंद, गन्ना में इसका प्रयोग हो सकता है। PSB सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो राइजोबियम कल्चर जैसा हम सब बहुत पहले से इसको प्रयोग करते रहे हैं। राइजोबियम जीवाणु युक्त जैव उर्वरक है जो वातावरण की नाइट्रोजन को फसल के साथ सहभागिता यानी सहजीवी रूप में अवशोषित करके भूमि में स्थिर करते हैं। अंकुरण के बाद ये जीवाणु भूमि की जड़ों में प्रविष्ट होकर छोटी छोटी गांठों का निर्माण करते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को देते हैं। राइजोबियम द्वारा औसतन 40 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर परिवर्तित होकर भूमि में बची रहती है जो आगामी फसल को लाभ पहुँचाती है। एजोटोबैक्टर ये असहजीवी जीवाणु है जो पौधों की जड़ों की सतह में रहते हुए नाइट्रोजन को परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये जीवाणु कुछ विशेष पादप वृद्धि नियामक पदार्थों का स्राव करते हैं जो फसल की उत्पादकता बढ़ाते हैं, साथ ही कुछ एंटीबायोटिक रसायन उत्सर्जित करते हैं जिससे फसल में लगने वाले भूमि जन्य रोग व वायरस रोगों से फसल का बचाव होता है। फास्फोरस प्रदायी जैव उर्वरक जिसे PSB कहते हैं, फास्फोरस प्रदायी जैव उर्वरक स्यूडोमोनास बैसिलस माइकोराइजा भूमि में उपस्थित अघुलनशील स्फुर को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः स्फुर की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे सुपर फास्फेट DAP का केवल 30% भाग ही घुलनशील अवस्था में पौधों को प्राप्त होता है, शेष 70% अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। स्फुर प्रदायी जैव उर्वरक जिसे PSB हम कहते हैं, भूमि में उपस्थित 70% अघुलनशील स्फुर को घुलनशील और गतिशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छा होने से 8-10% उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, हम अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे दलहनी फसल हो, तिलहनी हो या खाद्यान्न फसल, इनमें हम जैव उर्वरकों का प्रयोग कर हम जो रासायनिक खादों पर खर्च कर रहे हैं उसको भी बचा करके और एक जैविक खेती अपना करके भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी, विषय था जैव उर्वरक का खेती में उपयोग। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: रहेगी।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजाता थे और हमारी पसंद को लोकगीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती।
1: हाँ खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोकगीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही हुलास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी,
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाए।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
3: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम तर्पण, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
4: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकर

0: शङ्करः स्वस्य प्रारम्भिकभाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिकसम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलावर्यः अद्य चण्डीगढ़नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारतक्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन NTA इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट UG पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षानगर सूचनापत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:15 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। NTA इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचनापत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये ABPM जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः JP नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ MOU इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:10 पर अनुप्रसारित होंगे। सुनिए अल्ताफ हुसैन से उनका काव्य पाठ सुबह 7:20 पर। प्रातः 7:30 पर श्रोता साथी आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे।

श्रोता साथी आनंद लेंगे सुगम संगीत का प्रातः 8:30 पर। कलाकार हैं कपिल शर्मा। इस घंटे की खास खबरें सुनिए सुबह 8:58 और 10:58 पर। प्रातः 9 बजे सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथी आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का सुबह 9:30 पर। कलाकार है भरत नायक। जिले की चिट्ठी प्रातः 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी। श्रोता साथी आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का सुबह 10:05 पर।

हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित की जाएगी। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर हमारे ही केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में चर्चा के विषय होंगे समुद्र दिवस और वर्षा जल संग्रहण हेतु खेत में तालाब का निर्माण। साथ ही श्रोता साथी आनंद लेंगे बुंदेली लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी का।

आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पूरह परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी की और प्रदेश में आज करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं। मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और लेबनान में यूएन शांति मिशन में तैनात हैं, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी जिंदगी बदली है। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में भाजपा के 164 और कांग्रेस के 63 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। दो सीटें जीतने के बाद भाजपा के पास करीब 48 वोट बचेंगे, इसलिए तीसरी सीट के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल उच्चस्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जाँच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच शिविर का कल समापन हुआ। उन्होंने कहा कि जांच में आए हर मरीज का रिकॉर्ड तैयार कर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा,
1: हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की संख्या तो सर्वाइकल कैंसर, और ये भी बहुत गंभीरता से फैलने वाली बीमारी। मैं जानता हूँ कि बहने बेटियां संकोच करती है। यह सर्वाइकल बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है। और इसे मैं हाथ जोड़कर सभी परिवारों से अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से भी हाथ जोड़ के, कि अपनी 14 साल तक की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की रत्नामाला ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: मैं अपने समूह की बुककीपर हूँ, जिसका भी मुझे मानदेय मिलता है। पहले मेरे घर छोटी सी किराना दुकान थी, लेकिन समूह से लोन लेकर अब उसमें अधिक सामान रख लिया है और दुकान भी बड़ी हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है पैसे के लिए। स्वयं की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही हो जाती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में दूधी लकड़ी से बने पारंपरिक खिलौनों को भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
4: बुधनी की पहचान विशेष रूप से रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों हस्तशिल्प उत्पाद के लिए है। कारीगर मुलायम लकड़ी विशेषकर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग करके खिलौने तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक खराद मशीन पर आकार दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों व लाख से आकर्षक रूप दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों को विपणन प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
5: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
6: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं। इससे अब खिलौने आकर्षक और कम समय में तैयार हो रहे हैं।
4: बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। यही कारण है कि देश विदेश में इनकी मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान।
0: भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और इक्वाडोर के राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुँचने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 18 जून के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज से 12 जून तक 22वां हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव आयोजित होगा। ये महोत्सव रंगमंच के शिखर पुरुष हबीब तनवीर की पुण्यतिथि में हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में मॉनसून आने से पहले ही जून महीने में कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच, नीमच में 2.5 इंच पानी गिर चुका है। कल मॉनसून महाराष्ट्र पहुंच गया और अब अनुमान है कि प्रदेश में ये 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आज ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा सहित करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के मझौली में आयोजित गौंड समाज के जनजातीय महासम्मेलन में कल जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगर मालवा जिले के 20 गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 20 गांवों में नलकूप खनन की स्वीकृति मिली है। नर्मदापुरम जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 जून को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जिले में योग जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शाजापुर में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कटनी जिले में भी ग्राम पंचायतों में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करैरा में नवीन एसडीओपी कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह कल संपन्न हुआ। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। इस चरण में 1,25,917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब सुनिए अल्ताफ हुसैन से उनका काव्य पाठ।
1: मैं अल्ताफ हुसैन दतियावी शायर आपके सामने एक गज़ल हाजिर कर रहा हूँ। मेरी कश्ती को डुबोने की

डुबोने की कसम खाई है, और नाव तूफान में है, मल्लाह को नींद आई है, नाव तूफान में है, मल्लाह को नींद आई है। शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। बहरे उल्फत में ये तकदीर कहाँ लाई है, बहरे उल्फत में ये तकदीर कहाँ लाई है, और पाँव रखता हूँ जहाँ पर वहीं गहराई है। शेर हाजिर कर रहा हूँ कि वज़्मे खिलबत का हर एक रंग है उनवाने बहार, और तेरी तस्वीर है यालमे तन्हाई है। शेर सुनिएगा।

है। अगला शेर हाजिर करता हूँ। यूं तो दुनिया में हकीकत में है दिलकश, लेकिन ओ बात जो तुझ में है दुनिया में कहाँ पाई है। तवज्जो फरमा, शेर हर्ज है कि

ने ओ बाहे किस्मत के तुझे आज ही नींद आई।

गज़ल का आखिरी शेर और मक्ता पेश खिदमत है। वो खुद डूबो आए हैं हम अपना सफीना अल्ताफ़।

0: दिल की हर आरज़ू नाकाम हुई जाती।
1: अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ हुसैन से उनका काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म बालिका वधू से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। अमित कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म आनंद से गुलजार के लिखे और सलील चौधरी के संगीतबद्ध किए इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इससे

0: तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। आइए सुनते हैं फिल्म हकीकत से कैफी आजमी के लिखे मदन मोहन के संगीतबद्ध किए इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकार

0: सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म घर से, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने। आरडी बर्मन के सुरों से सजे इस गीत को सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। श्रोता साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म नूरी से। जान नक्श लियालपुरी के लिखे खय्याम के संगीतबद्ध इस गीत को सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 7:59 हो रहे हैं अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से

0: राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
8: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: करे आप ये कह दो
1: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस घंटे की खास खबरें अब से कुछ ही देर में भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिनिस्ट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं। राज्य से राज्यसभा सीट की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केन्द्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित होगी। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 12 से 18 जून तक जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं। 3,66,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में विदेश से आए राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की और मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून कल महाराष्ट्र पहुंच गया है और अब प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज राज्य के करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर, श्रोता साथियों को आपकी दोस्त व्याप्ति उमरेकर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 8 जून है। ये दिन भारतीय प्रसारण इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लेकर आया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ध्येय वाक्य लेकर आगे बढ़ने वाली आकाशवाणी आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। आकाशवाणी जिसने करोड़ों भारतीयों के सुख दुख उत्सव और संघर्ष को अपनी आवाज़ दी। साथियों, कहते हैं कि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, माध्यम बदलते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों के पार चली जाती हैं। आकाशवाणी ऐसी ही एक आवाज़ है, वो आवाज़ जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की भी गूंज सुनी, देश विदेश के समाचार सुनाए, किसानों को नई तकनीकें बताईं और कलाकारों को मंच दिया और घर घर संगीत पहुंचाया। साथियों, 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और यही दिन आकाशवाणी की औपचारिक स्थापना का दिवस माना जाता है। इससे पहले भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में बम्बई रेडियो क्लब से हुई थी और फिर 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अस्तित्व में आई थी। साथियों, स्वतंत्रता के समय देश में

आकाशवाणी के 6 प्रमुख केंद्र थे, लेकिन आज वर्तमान में 591 प्रसारण केंद्रों के साथ ये देश की लगभग पूरी आबादी तक पहुंचने वाला विशाल प्रसारण नेटवर्क बन चुका है। अनेक भाषाओं और बोलियों में प्रसारण करते हुए ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोता है। श्रोताओं, रेडियो केवल एक यंत्र नहीं था, वो परिवार का सदस्य है। सुबह का भजन, दोपहर की खेती बाड़ी की जानकारी, शाम के समाचार बुलेटिन और रात के फिल्मी गीत, इन सब के बीच रेडियो न जाने कब ही जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया। आकाशवाणी ने संगीत जगत को भी नई ऊंचाइयां दी। अनेक महान कलाकारों की पहचान सबसे पहले रेडियो के माध्यम से ही बनी। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, नाटक, कवि सम्मेलन और वार्ताओं की समृद्ध परंपरा ने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, रेडियो का प्रभाव वास्तविक जीवन से होते हुए भारतीय सिनेमा के भी कथानक का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यदि हम फिल्मों की बात करें तो रेडियो कई बार केवल एक उपकरण नहीं बल्कि कहानी का पात्र बनकर उभरा। मुझे याद आ रही है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, जहां रेडियो स्टेशन कथानक का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। फिल्म में रेडियो के जरिए लोगों तक संदेश पहुँचते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। दरअसल फिल्मों में रेडियो इसीलिए बार बार दिखाई देता है क्योंकि ये जो रेडियो है ना, ये लोगों के मन में बसता है। साथियों, जब 1965 और 71 के युद्ध हुए तब समाचारों का सबसे विश्वसनीय माध्यम रेडियो ही था। सीमाओं पर तैनात सैनिकों की खबरें हों, प्रधानमंत्री के संदेश और राष्ट्रीय महत्व की सूचनाएं हों, लोगों तक रेडियो के माध्यम से ये पहुंचती रहीं। आपदाओं के समय भी रेडियो ने हमेशा अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। जब बिजली और संचार के अन्य साधन ठप्प हो जाते हैं तब ये बैटरी से चलने वाला छोटा सा रेडियो लोगों को दुनिया से जुड़े रखता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में भी साथियों, आज भी रेडियो अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। डिजिटल स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से रेडियो ने अपने आप को, अपने स्वयं को नए समय के अनुरूप ढाल लिया है। आज आकाशवाणी रेडियो तरंगों के साथ डिजिटल मंचों पर भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी आत्मा वही है, जन जन तक विश्वसनीय सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुँचाना। 90 वर्षों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने भारत की बदलती हर तस्वीर को देखा है। उसे स्वतंत्रता की पहली सुबह देखी है, गणतंत्र का उदय देखा, हरित क्रांति देखी, अंतरिक्ष में पहुंचता भारत देखा और डिजिटल युग का विस्तार भी देखा। कभी गांव की चौपाल में रखा रेडियो, कभी शहर के ड्राइंग रूम में सजा ट्रांजिस्टर, कभी बस अड्डे की चाय की दुकान पर बजती समाचार बुलेटिन और आज मोबाइल फोन पर न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनाई देती लाइव स्ट्रीम। माध्यम बदले लेकिन आवाज वही है। साथियों, आकाशवाणी केवल प्रसारण संस्था नहीं बल्कि वह ध्वनि है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। ये वो मंच है जिसने अनगिनत कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों और विचारकों को पहचान दी है। आज जब हमारी आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर रही है तब हम उसके गौरवशाली अतीत को नमन करते हैं और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
3: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: साथियों, जरा सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आप रात के 2 बजे भी फोन कर सकते हैं? ऐसा कौन है जिसके सामने आपको अपने शब्दों को तोलना नहीं पड़ता? ऐसा कौन है जो आपकी सफलता पर उतना ही प्रसन्न होता है जितना आप स्वयं, और आपकी असफलता में बिना कहे आपके साथ खड़ा रहता है? संभव है कि इस प्रश्न

प्रश्न का उत्तर सोचते ही आपके मन में किसी एक मित्र का चेहरा उभर आया हो। यही तो मित्रता की शक्ति है, और इसी शक्ति, इसी विश्वास, इसी आत्मीय संबंध को समर्पित है बेस्ट फ्रेंड्स डे, जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है। साथियों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म के साथ नहीं मिलता, बल्कि जीवन की यात्रा में बनता है। माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन मित्र वो हम स्वयं चुनते हैं। शायद यही कारण है कि रिश्ते में एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता और आत्मीयता होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर मित्रों की भूमिका भी बदलती रहती है। बचपन में मित्र वो होता है जो अपनी टॉफी का आधा हिस्सा हमें दे दे, विद्यालय में वही मित्र परीक्षा से पहले अपनी कॉपी हमें पकड़ाता है, कॉलेज में वही दोस्त सपनों और संघर्षों का साथी बन जाता है, और जीवन के आगे के वर्षों में वही दोस्त हमारे अनुभवों, चिंताओं और उपलब्धियों का साक्षी बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सच्ची मित्रता केवल समानताओं पर नहीं टिकती। कई बार सबसे अच्छे मित्र वो होते हैं जिनकी आदतें, रुचि और स्वभाव हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, फिर भी उनके साथ एक ऐसा भरोसा विकसित हो जाता है जो समय और दूरी दोनों की परीक्षा में खरा उतरता है। आज के समय में जब हम जीवन में पहले की तुलना में अधिक व्यस्त और तेज हो गए हैं, तब मित्रता का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम तकनीक के माध्यम से हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन मन की बात कहने के लिए अक्सर हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मित्रता संख्या का नहीं, साथियों गुणवत्ता का विषय है। कई बार लोग पूछते हैं कि एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या है। क्या वो व्यक्ति जो हर समय हमारी प्रशंसा करे, या फिर वो जो हर बात में हमारा समर्थन करे। साथियों, वास्तव में सच्चा मित्र वो नहीं होता जो केवल हमारी हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा मित्र वो है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे भूलों की ओर भी संकेत करे, जो हमारे निर्णयों पर प्रश्न कर सके, जो हमें केवल अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। साथियों, हमारी भारतीय परंपरा में मित्रता को उच्च स्थान दिया गया है। हमारे साहित्य, इतिहास और लोक कथाओं में मित्रता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मित्रता केवल हमारे यहाँ सामाजिक संबंध नहीं बल्कि नैतिक और भावनात्मक दायित्व माना गया है। महाभारत में प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल सारथी और योद्धा का नहीं था, वो विश्वास, मार्गदर्शन और सहयोग का संबंध था। जब अर्जुन जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व में था, तब प्रभु कृष्ण ने उन्हें केवल सांत्वना नहीं दिया बल्कि सही दृष्टि प्रदान करी। यही मित्रता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मित्र केवल साथ नहीं देता, वो दिशा भी देता है।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और

0: भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पृथ्वी से महासागर गायब हो जाए तो क्या होगा? पहली नज़र में ये प्रश्न थोड़ा अजीब लग सकता है। हम में से बहुत से लोग समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं। हम में से कई लोगों ने समुद्र देखा भी नहीं होगा। ऐसे में लग सकता है कि समुद्र का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध? लेकिन साथियों, सच तो ये है कि समुद्र से हमारा रिश्ता उतना ही गहरा है जितना हमारी सांसों से। हम चाहे समुद्र तट पर रहते हों या किसी पहाड़ी क्षेत्र में, महानगर में हों या गांव में, महासागर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी महत्व को समझने और महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, जब हम पृथ्वी की तस्वीर अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो नीले रंग का एक सुंदर ग्रह दिखाई देता है। इसके कारण है कि पृथ्वी की लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है। यही वजह है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन महासागर केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं है, वे पृथ्वी की जीवन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। साथियों, हम दिन भर में कितनी बार सांस लेते हैं, शायद इसका हम हिसाब नहीं रखते। लेकिन वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री पादप प्लवकों से आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी हर दूसरी सांस कहीं ना कहीं महासागर से जुड़ी हुई है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि जिन महासागरों को हम अक्सर केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं, वे वास्तव में हमारे जीवन के संरक्षक हैं। अब आप सोच रहे हैं कि महासागर और क्या क्या करते हैं? तो साथियों, महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वातावरण की अतिरिक्त ऊष्मा को अपने भीतर समाहित करते हैं, और यदि ऐसा न हो तो पृथ्वी का तापमान कहीं अधिक बढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि मौसम में होने वाले कई बड़े बदलाव समुद्री परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। वर्षा का चक्र हो, मानसून हो या वैश्विक जलवायु का संतुलन, इन सभी में महासागरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए तो महासागर और भी महत्वपूर्ण है। हमारी लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। करोड़ों लोगों की आजीविका समुद्र से जुड़ी है। मछली पालन, समुद्री व्यापार, बंदरगाह, पर्यटन और परिवहन, इन सब का आधार साथियों महासागर ही है। यदि हम अपना इतिहास देखें तो पाएंगे कि भारत का समुद्र से संबंध बहुत पुराना है। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी समुद्री मार्गों से दूर दूर के देशों तक जाते थे। हमारे बंदरगाह केवल व्यापार के केंद्र नहीं थे बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बना। लेकिन श्रोताओं, जिस समुद्र ने मानव सभ्यता को इतना कुछ दिया, आज वही अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। जरा कल्पना कीजिए कि हम अपने घर का कचरा सड़क पर फेंक दें, सड़क का कचरा नालों में जाए, नाले नदियों में मिले और नदियाँ अंततः समुद्र में जाकर मिल जाए, परिणाम क्या होगा? आज यही हो रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंच रहा है। प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां, पैकेजिंग सामग्री और अन्य अपशिष्ट समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। कई बार समुद्री जीव इन्हें भोजन समझकर निगल लेते हैं और इससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। कुछ प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये कण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और अंततः हम तक भी, मनुष्य तक भी पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिस समुद्र से हमें भोजन मिलता है यदि वही प्रदूषित हो जाए तो उसका प्रभाव हम सब पे क्या पड़ेगा? साथियों, आज विश्व भर में ब्लू इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। इसका अर्थ है महासागरीय संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। विकास और संरक्षण साथ साथ चले, यही भविष्य का मार्ग है। ऐसे में विश्व महासागर दिवस हमें यही संदेश देता है कि प्रकृति से केवल लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उस धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित भी रखना होगा।

साथियों, आपसे बातें करते करते मुझे वक्त का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब मुझे इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम को यहीं विराम दे दूं। तो अपनी दोस्त व्याप्ति उमरेकर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं भरत नायक, तबले पर संगत कर रहे हैं पांडुरंग तेलंग। आइए सुनते हैं राग नट भैरव में भरत नायक का गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग नट भैरव में भरत नायक का सितार वादन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। मवई विकासखंड के दाढ़ी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल और रात्रि विश्राम कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश रघुवंशी और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। कान्हा टाइगर रिजर्व के इको सेंटर खटिया में वन्यजीव निगरानी को वैज्ञानिक बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मंडला, बालाघाट और डिंडौरी सहित 7 वन मंडलों के 70 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रतिभागियों को एमएस ट्राइब मोबाइल ऐप के माध्यम से वन्यजीव निगरानी, गश्त और डेटा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की रोकथाम संबंधी जानकारी भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण से 6 भागों की मौत के बाद प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। संक्रमण रोकने के लिए मुख्य क्षेत्र में लार्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वायरस के प्रसार और बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। लार्ज संचालकों ने आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की गई। कोर बफर वनमंडलों और पेन अभयारण्य के 13 परिक्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया। पहले दिन 306, दूसरे दिन 333 और तीसरे दिन 263 गिद्ध दर्ज किए गए। सर्वेक्षण में भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध और राज गिद्ध की पहचान हुई। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत मंडला पुलिस ने 1 से 6 जून तक 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें पुलिस कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ DIG विनीत जैन ने किया। कार्यक्रम में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन शिक्षण संस्थान मंडला ने मां नर्मदा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों ने घाट की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश क्षत्रिय और निदेशक अखिलेश पांडे ने जल संरक्षण और जन भागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 25 से 31 मई तक नो टबैको सप्ताह मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम बताए। जिला नोडल अधिकारी डॉ. रानी महारावी ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जेसोबा संस्था ने गोंडी पब्लिक ट्रस्ट भवन में आयोजित समारोह में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय के टॉपर्स और प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और

0: प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व साइकिल दिवस पर 148वीं वाहनी सीआरपीएफ ने मंडला साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली। कमांडेंट विक्रांत सारंग पाणी के निर्देशन में आयोजित रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। रैली में सीआरपीएफ जवानों, स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। रामनगर में आयोजित दो दिवसीय आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गोंडवाना साम्राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शनी और संगोष्ठियां कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहीं। चुटका परमाणु परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कौंची माल स्थित आरएनआर कॉलोनी में शुरू हो गया है। मंत्री संपतिया उइके ने परिवारों का गृह प्रवेश कराकर प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। प्रभावित 330 परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त नया आवास दिए जा रहे हैं। साथ ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत महिष्मती घाट पर विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे सहित अन्य अधिकारियों ने योगाभ्यास किया और औषधीय पौधे लगाए। आयुष विभाग द्वारा 1 जून से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अभ्यास सत्र 21 जून तक प्रतिदिन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम एमपी सेडमैप और परम फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए केयर थेरेपिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र बिछिया में दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और प्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका परिषद मंडला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत घर बनाने, खरीदने और ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन के लिए हितग्राही नगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आइए सुनते हैं फिल्म जो जीता वो सिकंदर से ये पहला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी ने, कडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल ने, साथ ही दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने।

अब सुनिए फिल्म कहूँ ना प्यार है से राजेश रोशन के संगीतबद्ध इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के ने, और नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अब सुनिए फिल्म क्रिमिनल से कुमार सानू की आवाज में गीत, जिसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है MM करीम ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा ने। साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म दामिनी से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है मुकाम पोस्ट फुल चंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबह

मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरे मुलानी परिवार ने, साथ ही धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोता साथी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का आनंद ले रहे हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से आनंद बख्शी के लिखे, जतिन ललित के संगीतबद्ध किए इस गीत को उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में। सुनने की फरमाइश की है न्यू बजरंग कॉलोनी गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या श्रेया और देवांशु ने। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और देवश्री ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षता लोखंडे ने और समस्त लोखंडे परिवार ने, साथ ही अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर ने, लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म बॉम्बे से चित्रा की आवाज़ में महबूब के लिखे एआर रहमान के स्वरबद्ध किए इस गीत को। सुनने की फरमाइश की है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम बेलदार, अकरम बेलदार, उल्लाह बेलदार, आसमा बेलदार, डब्लू बेलदार और सोनम बेलदार ने। साथ ही बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आसमा कुरैशी, मोहम्मद कलीम आसमा कुरैशी ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोता साथियों, अब सुनते हैं फिल्म विरासत से ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे और अनु मलिक के संगीतबद्ध इस गीत को जसपिंदर नरूला की आवाज़ में सुनने की फरमाइश की है लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी ने। साथ ही खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा ने। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का और डुग्गू सिक्का ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सामने होंगे। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 12 से 18 जून तक जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी के 591 रेडियो स्टेशनों से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में विश्वसनीय समाचार प्रसारित किए जाते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज राज्य के करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम।
1: ध्वनि की तरंगों से मुखरित होते शब्द जन जन की वाणी बन साकार करते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जो अपने विविध रूप और रंग में, नाम और काम में, शिक्षा और सूचना लिए मनोरंजन का सशक्त और जीवंत उदाहरण बन समय के साथ 90 वर्षों से गतिमान है। आज यानी 8 जून 2026 दिन है पूर्णता का, दिन है उत्सव का, अपनी खुशियों को साझा करने का, दिल की बात कहने और सुनने का।

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधे श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से और विशेषज्ञों से। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी बात हुई उन सब से जो जुड़े हैं आकाशवाणी से, महसूस करते हैं आकाशवाणी को और अपनी बातों, विचारों और मशवरे से समृद्ध करते हैं आकाशवाणी को। श्रोताओं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता वर्मा, आप प्रिंसिपल हैं एम्स नर्सिंग कॉलेज में। नमस्कार ममता जी।
1: नमस्कार।
0: आप ये इस बात को बहुत बेहतर जानती हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में यात्रा कर रहा है और 8 जून को इसके 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आकाशवाणी को लेकर आपकी अपनी कोई खूबसूरत सी याद या कोई ऐसी बात हो जो आप साझा करना चाहें आकाशवाणी के साथ और सुनने वालों के साथ?
1: जैसे ही आपने यादों की बात करी तो मेरा दिल और दिमाग करीब 30 साल पहले की एक घटना पे चला गया जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ।
0: जी।
1: मैंने इंदौर से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है। ये सन 1996 की बात है
0: जी,
1: जब मैंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और जो कि आकाशवाणी ने आयोजित करी थी।
0: अच्छा।
1: ये वाद विवाद प्रतियोगिता एड्स रोग के ऊपर थी। और जब मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता आकाशवाणी ने आयोजित की है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई सिर्फ भाग लेने से। उस समय मेरी इच्छा थी कि आकाशवाणी आयोजित कर रहा है तो मुझे भाग लेना है।
0: जी।
1: आकाशवाणी से मेरा लगाव इस तरीके से भी था उस समय सन 1996 में, क्योंकि बचपन से मैंने अपने पिताजी को ट्रांजिस्टर पे आकाशवाणी सुनते हुए देखा था, तो मेरे लिए वो आकाशवाणी कुछ ऐसा होता था कि कोई एक बहुत दूर की बात है, कोई भव्य सी चीज है जिसको सिर्फ सुनना मेरे लिए, जिसको सुन के मैं बड़ी हुई थी
0: जी।
1: और करीब 20-22 साल बाद उसी आकाशवाणी द्वारा किसी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था जो कि मेरे सब्जेक्ट मतलब स्वास्थ्य से संबंधित था, तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लेना अपना सौभाग्य समझा।
0: बहुत बढ़िया।
1: ये मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो मैंने काफी तैयारी करी थी और खूब बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद में मैंने कोई तो भी एक मतलब पोजीशन लिया था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं विजेता रही उस प्रतियोगिता में। और मुझे मंच पे बुलाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट के सामने जब मुझे वो प्रशस्ति पत्र दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो यूनिवर्स ने, जगत ने, जिसे कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। जो बचपन से मैं ट्रांजिस्टर पे छोटा सा सुनती थी
0: जी, जी।
1: जो आकाशवाणी मेरे कानों में घुलता था, उसी आकाशवाणी द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में मैंने कोई खिताब जीता, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा मेरा उत्साह वर्धन किया गया। जब मैंने वो पुरस्कार लिया तो मुझे ये बताया गया कि आपके द्वारा बोले गए भाषण की रिकॉर्डिंग हुई है जो कि प्रसारित की जाएगी।
0: अरे वाह।
1: इसके बाद ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग मैं सुन नहीं पाई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरे बचपन की स्कूल की एक सखी थी, उनकी माँ ने सुना।
0: अच्छा।
1: और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरी दोस्त को बताया और मेरी दोस्त ने कहा, ममता तुम्हारा भाषण वाद विवाद वाला मेरी माँ ने रेडियो पे सुना और उन्होंने ये कहा कि ममता को कहना कि वो बहुत अच्छा भाषण बोलती है, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया।
0: बहुत अच्छी बात है। आपकी तो बड़ी खूबसूरत सी याद जुड़ी है आकाशवाणी से, लेकिन ये याद दोहराते हुए आपने एक चीज कही थी कि जब आपके पिताजी इसे सुनते थे तो ये आपको एक बहुत भव्य सी चीज लगती थी। आकाशवाणी की यात्रा यदि आपके उस वर्ष 96 से भी अपन तय करें यहाँ तक, तो भी एक लंबा वक्त हो गया है, 30 साल पूरे हो गए हैं 96 से 2026 तक। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 30 वर्षों में आकाशवाणी अपनी उसी भव्यता के साथ खड़ी है?
1: जी, मुझे बिल्कुल लगता है। मैं बहुत ठोस रूप से इस चीज को महसूस करती हूँ कि आकाशवाणी अभी भी उन दिलों में वैसी ही धड़कती है जैसे 25 साल पहले या 50 साल पहले धड़कती थी। और ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, इसका फॉलो अप ऐसा हुआ कि 1996 के बाद में वो ट्रॉफी मैंने अपने घर में रखी और पिछले 2 साल पहले ही मैं किसी एक कार्यक्रम में अपनी छात्राओं को लेकर के गई थी और वहां पर मुझे आकाशवाणी के मनीष जी मिले, मुझे नहीं पता था वो आकाशवाणी से हैं। उन्होंने आकर के उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मेरा मत जानना चाहा और उन्होंने जैसे ही कहा कि मैडम मैं आकाशवाणी से हूँ, तो दिन में मेरी आंखों से तारे चमकने लगे। मुझे वो ही याद आ गया कि देखिए ये कितनी बार आकाशवाणी घूम फिर के मेरे इर्द गिर्द 10 साल 20 साल में लौट करके आता है। तो जो आपने कहा कि जो 90 वर्ष में आकाशवाणी की भव्यता है, जैसे समुद्र की लहरें लौट करके जा करके पलट के वापस आती हैं, मेरे जीवन में आकाशवाणी इसी तरीके से किसी न किसी रूप में जा करके पलट के वापस आया और वो भव्यता या वो जो लगाव जिसे कहते हैं वो एक फिर से एकदम से जैसे कली खिलती है पुष्प पुलकित होता है वैसे फिर से हो जाता है। और आज आपसे बात करके देखिए फिर से मैं उतनी ही खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही रेडियो में बचपन में सुनती थी, वही मुझे आकाशवाणी से दोबारा रिकनेक्ट करवाया और आज फिर मैं आकाशवाणी से आपके थ्रू कनेक्ट हो रही हूँ।
0: खुशी जो है, जो एक संतोष है, ये आपकी आवाज से आपकी बात से छलक रहा है। हम चाहेंगे कि सागर की ये लहरें यूं ही आती जाती रहें और सागर की लहरें जब आती जाती हैं तो कई बार वो पारितोष के रूप में हमारे लिए कोई रत्न कोई मोती ज़रूर लेकर आती हैं। तो आकाशवाणी की ये लहरें अथाह समुद्र की तरह यूं ही बढ़ती रहें चलती रहें। बहुत अच्छा लगा ममता जी आपकी याद को जानकर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी इस याद से ज़रूर प्रफुल्लित हुए होंगे।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया, जो कवि हैं हिंदी और बुंदेली के।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, आकाशवाणी के ये शक्ति सामर्थ्य के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से समूची टीम को, श्रोताओं को, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आकाशवाणी के संदर्भ में ये कहना बहुत जरूरी है कि ये बहुत लोक मंगलकारी साधन है, जन जन को आकृष्ट अभिभूत करने वाला, यूं कहना चाहिए अपने आरंभ काल से 70-75 वर्ष तक का आकाशवाणी का एक छत्र राज्य रहा, एकाधिकार रहा, इसकी उपस्थिति बहुत बहुत आकर्षक रही। राष्ट्रीय उत्कर्ष के संबंध में, खोज खबर के संबंध में, सारे तथ्य पर खोज खबरों का प्रदान करना, मनोरंजन करना, देश को बहुत गर्वित करने वाला माध्यम हुआ। इसका जो स्वर्ण काल था, तो हम आपको सबको मालूम है कि पूरा देश रेडियो को अहर्निश लगा रहता था
2: जी।
1: अगर कमेंट्री आ रही है तो लोग अपने बिस्तर पर रेडियो लिए सुनते थे, गीत आ रहे हैं तो लोग खेत खलिहान

0: कानों में उसको सुन रहे, लोकगीत आ रहे हैं तो गांव का, देहात का, नहर शहर का, सारे लोग उसको सुना करते थे। वैसे भी वेदों के पहले श्रुतियां थी, सारा कुछ सुनने ही उससे हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और जब सब संसार हुआ तो ये लोग के यहाँ ये भी बात थी अपनी संस्कृति में के व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए और बहुपट होने चाहिए, वही योग माना जाता था जो बहुश्रुत हो
1: जी।
0: तो सर्व संसार का एक बड़ा विलक्षण साधन है। और हम देखते हैं कि इसमें पूरा देश, इसका जब स्वर्ण काल हुआ तो सारी बातें आकाशवाणी ने कवर की, संगोष्ठियां हुई, रूपक हुए, नाटक हुए, काव्य गोष्ठियां हुई
1: जी,
0: शास्त्रीय संगीत हुआ तो सुगम संगीत भी हुआ, सुगम संगीत हुआ तो बच्चों के लिए भी संगीत में ताल कथाएं बनाई गई, रूपक हुए, नाटक हुए, फिल्मी गाने तो इतने हुए, कुछ न पूछिए। और एक बात और भी है, 70 का जो दशक था उस समय के फिल्मी गाने बहुत ही साहित्यिक थे
1: जी।
0: बहुत लोगों को उनकी जुबान पर बैठ गए थे, आलेख हुए, विशिष्ट विभूतियों के पर केंद्रित तो बहुत संगोष्ठियां हुई, पर्व विशेष पर रूपक विशेष हुए, लोकगीतों के, संस्कार गीतों के, सारे कुछ आकाशवाणी ने कवर किए। कहना तो ये चाहिए कि आकाशवाणी शास्त्र की वाणी है
1: जी।
0: क्योंकि शास्त्र में जो लिखा वो आकाशवाणी में आया, जो लोक में हुआ वो आकाशवाणी में आया। स्वर की और संगीत की वाणी है, कला और संस्कृति की वाणी है, राजनय और नीति की वाणी है। और एक बात और है, सारी भाषाएं देव भाषा से प्रसूत है और उसमें अपनी जो राजभाषा है ये राजभाषा की वाणी है। और राजभाषा ही नहीं, तमाम विभाषाओं में विरचित, कथित, संकल्पित सृजनों के मूल मंत्रों के उच्चारण के विशाल व्योम में गुंजारित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम। क्या क्या नहीं किया आकाशवाणी ने विचारों के, गद्य पद्य के स्वरूपों को, गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं उनको वैखरी के, वैखरी अर्थात कंठ से निकले हुए स्वर लोक श्रुत हुए और कंठार बन गए। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आकाशवाणी मेरे विचार में अनेक कालखंडों की बहुत कीमती वाणी है, बहुत कीमती वाणी।
1: आपकी इस बात से निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित हैं। हम आपसे एक शुभकामना चाहेंगे इस 90 वर्ष पर।
0: इस 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके आकाशवाणी के इस आमोद भरे अवसर पर मैं अपने हृदय तल से आकाशवाणी का आदर अभिनंदन करता हूँ, देशवासियों को मैंने शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।
1: कोई छोटी सी कविता या कोई छंद सुनाएंगे आप?
0: जी जी बिल्कुल, एक छोटी सी कविता रखता हूँ। मैं लोक भाषा का कवि हूँ तो मैं एक गीत, छोटा गीत रखता हूँ, तो सुनिए। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा गाँव की गोरी का मन। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा होता है गाँव का मन। घर क्या है छप्पर छानी के महल गढ़ दिए हैं, फिर पीरे पीरे गुबरी ले वर्क जड़ दिए हैं। सब अचला के अंचल से निकले हैं चाल चलन, तुम क्या जानो कैसा गाँवों की गोरी का मन। सहज सुलभ संवादों से झर पड़ते नंदन मन, सहज सरल संवादों से झर पड़ते नंदन मन। तुम क्या जानो कैसा होता है गाँवों का मन, तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन।

0: हमारे साथ जुड़ी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी नुसरत मेहंदी।
1: स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में। एक लिसनर की दृष्टि से, एक शायरा की दृष्टि से, उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर की दृष्टि से और तमाम सारे आपके जो जीवन के आयाम हैं उन सभी दृष्टियों से आप आकाशवाणी को किस रूप में महसूस करती हैं?
2: सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने खूबसूरत मौके पर आपने मुझे याद किया। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी का मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर लेखनीय दुनिया में हूँ, चाहे वो मेरा प्रोज का गद्य का क्षेत्र हो या शायरी का क्षेत्र हो, तो इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरी जीवन यात्रा, मेरी सृजन यात्रा जो शुरू हुई थी वो आकाशवाणी नजीबाबाद का जो रेडियो स्टेशन था वहां से हुई थी।
1: अच्छा।
2: मेरी पहली कहानी मैं क्या हूँ आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हुई थी।
1: अरे वाह।
2: और वहीं से मेरी सृजन की यात्रा शुरू हुई है। तो मेरे जीवन में तो आकाशवाणी का इतना महत्व है कि शायद दूसरे किसी के जीवन में नहीं होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि अगर जो हमारा प्रोफेशनल जीवन होता है उसमें आकाशवाणी नहीं होती, रेडियो नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज तो बहुत सारे टाइम था कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ रेडियो ही होता था जिससे सूचनाएं मिलती थी और हम लोग अपडेटेड रहते थे। तो जितने भी जीवन के आयाम आपने जिक्र किया, चाहे वो मेरा उर्दू अकादमी का हो या शासन के किसी भी विभाग का मामला हो, आकाशवाणी के बिना इनकी सारी सार्थकता अधूरी है। क्योंकि आज भी, ये पुराने जमाने की बात तो मैं कह ही रही हूँ कि उस समय तो कोई माध्यम था ही नहीं, लेकिन अगर आज का भी हम जिक्र करें और बेशुमार माध्यम है सोशल मीडिया के, लेकिन उसके बावजूद जब आपका नमस्कार भोपाल या और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रसारित होते हैं तो हमारे पास आज भी फोन आते हैं, क्योंकि आप लोग इतने सक्रिय हैं कि एक तो हर कार्यक्रम पे नजर रखते हैं और हमें नहीं कहना पड़ता। ये आप लोग की सक्रियता, उसको साधुवाद और प्रणाम करती हूँ। और जब वो प्रसारित होता है तो हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, फोन आते हैं कि हमने आज आपका ये सुबह सुना और हम आज आ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही शानदार यात्रा रही है, बहुत ही सफल और बहुत ही सार्थक यात्रा रही है आपकी।
1: बहुत धन्यवाद। हम देना चाहेंगे आप जैसे सुधे श्रोता और आप जैसे साहित्यकारों से जुड़कर, कलाकारों से जुड़कर ही आकाशवाणी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। यदि शुभकामनाओं की बात की जाए तो आप आकाशवाणी के भविष्य को लेकर क्या कामना करना चाहेंगी?
2: मेरी शुभकामनाएं दिल से आपके साथ हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप लोग जिस तरह से प्रसारित करते हैं इसी तरह के और कुछ और इनमें आयाम आप जोड़ सकते हैं। वैसे आपके यहाँ सब कुछ शामिल है क्योंकि मैं आपके दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होती हूँ, मुशायरा कवि सम्मेलन भी होते हैं। कुछ चीजें हैं कि जैसे एक शायर को बैठा लेते हैं और दूसरा एक उसके कलाम को कंपोज करके गाता है, कलाम शायर शायद पहले कभी हुआ करता भी था। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको, ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे हमारा आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी की इस 90 वर्ष की यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं नारायण व्यास, जो पुरातत्वविद हैं और इस कार्य के लिए आप पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं।
1: नमस्कार जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय तक अपने कार्य में लगे रहे निरंतर, और आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको शासन से पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। एक पुरातत्वविद की दृष्टि से, एक श्रोता की दृष्टि से, या एक सामाजिक दृष्टि से आकाशवाणी का क्या महत्व महसूस करते हैं आप उसकी इस लंबी यात्रा में?
1: ये आकाशवाणी का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व, हम बचपन से ही देख रहे हैं, आकाशवाणी को सुनते हैं। और अभी जब से मेरी नौकरी 1978 में लगी है, मेरी जो 1980 के बाद तो पता नहीं कितने वार्ताएं आपके आकाशवाणी से हुई भी है पुरातत्व के विषय में। तो उसमें पहले ये जो यहाँ 1992 के करीब, तो एक महीने में 4 वार्ताएं मेरी करते थे।
0: अच्छा।
1: उसमें ये जो भोपाल के आसपास के जितने पुरातत्व स्थल होते हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी। और कई बार हम लोग तो कह टेलीकास्ट यहाँ पर बैठ के जो हुआ है, जो पुराने सियालदह जी है यहाँ और हम दोनों ऑफिस के लोग थे, तो वहीं बैठ के आकाशवाणी में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश को कंट्रोल करके और सब उनकी समस्याएं जो पुरातत्व की नई नई खोज क्या होती है, ये पूरी जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से हमने वो सब जनता को दी। और कई उसमें ऐसी सूचना भी मिली उनसे, लोगों से, जिसमें हम जाके साइट विजिट किए, वो चीज हमें मिली भी, क्योंकि पुरातत्व का ऐसा विषय है क्योंकि जनता को जोड़ने के लिए आकाशवाणी का ऐसा बहुत बड़ा महत्व रहा है। विशेष रूप से हम जो नए नए उत्खनन करते थे उनकी जो जानकारी हमसे पूछते थे, डायरेक्ट लाइव आपके यहाँ से होता था, तो हम बताते थे उनको कि कैसे ये पुरानी संस्कृति की खोज कैसे की जाती है, पुराने टीलों के किनारे, नदी किनारे घूमते रहते थे। लेकिन क्या है कि हम खोज तो कर लेते हैं लेकिन प्रचार प्रसार कौन करेगा, लेकिन जो रेडियो आम जीवन में जो रहता है गाँव में सब जगह, वो लोग सब सुनते, हम उनको बताते हैं कैसे संस्कृति की खोज होती है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और उनको बताते देते भी है कि इतिहास पुरातत्व दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, पुरातत्व तो जमीन के अंदर है, इतिहास बाहर है। तो आकाशवाणी से जो ऐसी चीजें जाती लोगों की तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है। और आपकी आकाशवाणी की टीम के साथ हम कई स्थानों भी गए, सांची में भी किया, खजुराहो में भी किया, और बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट साइट से जो विश्व धरोहर से संबंधित है। सबसे ज्यादा सफल कार्यक्रम हमारा सांची में हुआ था और खजुराहो में हुआ था। तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से कितना पुरातत्व का प्रचार प्रसार हुआ है, ये हम अब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडियो कैसा है, हम चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, टेलीविजन नहीं देख सकते, सुन सकते या देख सकते हैं, उसके लिए देख देख बैठना पड़ता है, पर रेडियो तो हम कहीं भी ले जाके सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना भी चाहूंगा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारा पुरातत्व का बहुत प्रसार प्रसार हो। और मैं कह सकता व्यक्तिगत भी मुझे लोग जानने लगे कि ये तो व्यास जी हैं आकाशवाणी से, कई बार हम इनके ये कि जो शोध लेख भी होते ये सुनते थे पहले, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ आर्य साहब भी थे, उनके समय भी हुआ, उसके पहले भी कई लोग होते थे। तो देखो हम लोग पैसों की चिंता नहीं, हम देखते हैं हमारी जनता के साथ में कितने जुड़ाव रेडियो के माध्यम से होता है, वो हम लोगों को बहुत हुआ, तो हमें तो आज भी बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं तो ये स्थापना के जो 90 वर्ष हो रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं एहसान भी मानता हूँ कि आपके माध्यम से हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे साथ हैं उदयन वाजपेयी। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि उनकी पारखी दृष्टि समाज के हर अंग पर, हर वर्ग पर, हर आयाम पर पड़ती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा में रेडियो के या आकाशवाणी के समाज के प्रति योगदान की बात जानना चाहेंगे, और सुनने वालों का क्या रिश्ता बन पाया आकाशवाणी से।
1: एक तो पहले मैं आपको ये चीज स्पष्ट करूं कि कभी भी रेडियो जो है वो, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में आकाशवाणी है, वो कभी भी टेलीविजन से ज्यादा दूर तक और देर तक रहने वाला मीडिया है। उसका सीधा कारण ये है कि दृश्य से ऊब और थकान दोनों होती है, जबकि सुनने से जो कल्पनाशीलता है वो जागृत होती है। इसीलिए सिनेमा में भी, जो कि दृश्य का और सुनने का माध्यम है, उसमें जो साउंड है, आवाज है, उसकी कहीं अधिक अर्थवत्ता होती है बनस्पत दृश्य के। तो इसलिए आकाशवाणी, क्योंकि ये सुनने का, श्रवण का माध्यम है, इसलिए इसका कभी भी ज्यादा महत्व बहुत सारे लोगों का के जीवन में रहा है। और एक जमाने तक तो केवल आकाशवाणी ही था, और आज भी बहुत हद तक आकाशवाणी ने कम से कम संगीत के क्षेत्र में और बातचीतों के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बना के रखी है। कई जगह विश्वसनीयता प्रश्नांकित उसकी हुई है, लेकिन ये होता है लंबे दौर में, अलग अलग किस्म के जब आप तंत्रों में रहते हैं तो ये सब तो होता है। बचपन से हमारे घर में उदाहरण के लिए फिल्मी संगीत सुनने की इजाजत नहीं थी जब हम बच्चे थे। आप समझिए 1966 या 70 के आसपास की बात है। आकाशवाणी पर उन दिनों फिल्मी गीत सुनना, कम से कम मेरी बहनों के लिए, एक तरह से उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो छुप के सुनती थी
0: जी, जी।
1: माता पिता से छिप के, लेकिन माता पिता से छिप कर जो आप काम करते हैं वो एक तरह से बचपन से ही आपकी स्वतंत्रता का प्रशिक्षण होता है कि आपकी अपनी दुनिया क्या है। आप अन्यों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, ताऊ वगैरह से भिन्न कहाँ हैं। तो आकाशवाणी एक तरह से बहुत लोगों का, सिर्फ मेरी बहनें हो उसमें उदाहरण हो ये नहीं है, बहुत लोगों के लिए आकाशवाणी को सुनना उनके स्वातंत्र का प्रशिक्षण जैसा था, जो बाद में उन्होंने कई तरह से प्रकट हुआ होगा। दूसरा, उसमें शास्त्रीय संगीत जो आता था और उसमें जो बहसें हुई हैं आकाशवाणी की शुरुआत में, केसकर जब थे, अगर मुझे ठीक याद है, पहले डायरेक्टर जनरल
0: जी। सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेक्शन कह लीजिए या ये दोहराना चाहूंगी कि केसकर साहब उस समय INB मिनिस्टर हुआ करते थे।
1: अच्छा,
0: और,
1: अच्छा, अच्छा।
0: जी, और पहले जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो
2: गिरिजा कुमार माथुर
0: साहब थे।
1: हाँ, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही, साहब हम हारमोनियम को इजाजत नहीं देंगे, ये कोई एक ऐसा निर्णय नहीं था जो एक किस्म का अपने आप ले लिया गया निर्णय हो। उसके पीछे भारतीय संगीत की एक गहरी समझ थी, उसके भीतर जो परिवर्तन हुए हैं संगीत, शास्त्रीय संगीत में, उसकी जरूर अनदेखी थी, लेकिन फिर भी एक गहरी समझ थी। बहसें बड़ी दिलचस्प होती थी। हम चूंकि शुरू में हमारा जो परिवार है वो साहित्य, कला, संस्कृति आदि का केंद्र जैसा रहा है, हम सारे लोग लेखक, कलाकार या नर्तक वगैरह रहे हैं तो, और हैं, तो उसमें ये बहसें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती थी कि हारमोनियम में क्या सीमा है।
0: जी,
1: तो फिर पता लगा कि भाई उसमें श्रुति नहीं सुनाई पड़ती, स्वर से स्वर पे आप जाते हैं, और वो हमारे यहाँ संगीत में उतना महत्व का नहीं होता। हमारे यहाँ श्रुतियों की केंद्रीयता है नृत्य संगीत। तो बहुत सोच के, संगीत के स्वरूप को समझ के वो बंदिश लगाई गई थी। हमारे यहाँ ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं बजता। ध्रुपद में केवल ज्यादा से ज्यादा तानपुरा बजता है, और अगर थोड़ा बहुत उसको आप विस्तार करें तो थोड़ा बहुत सारंगी बजती है, लेकिन ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं होता। उसका कारण है कि ध्रुपद में जो श्रुति है उसकी केंद्रीयता बहुत अधिक है। ये बहस बड़ी पुरानी, और ये संगीत पर बहस आकाशवाणी से पैदा हुई थी।
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: संगीत पर एक किस्म की दार्शनिक बहस है, सौंदर्य शास्त्रीय बहस है। ऐसी बहसें आपको दूरदर्शन पर या आजकल जो बहुत सारे हजारों चैनल्स हैं जो ज्यादातर बिके हुए हैं, उनमें कोई नहीं समझ में आएगी आप, उसमें कोई ऐसी बहस होती ही नहीं। दूसरा, आकाशवाणी ने अपने को बाजार से बहुत हद तक स्वतंत्र रखा था, क्योंकि आकाशवाणी में जो लोग हैं, यहाँ भारतीय जो नागरिक हैं, समुदाय है, जो सामुदायिक जीवन है वो केंद्रीय था, बाजार केंद्रीय नहीं था। दूरदर्शन के पहले क्षण से
0: जी।
1: बाजार केंद्र में आ गया, समाज केंद्र से विस्थापित हो गया। तो दूसरी बात ये थी कि आकाशवाणी ने अपने को भारतीय लोगों की आवाज के रूप में, उनके मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया था और अपना आकार ग्रहण किया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बात हमें समझने में बहुत सारे युवा लोगों को असंभव जान पड़ेगी।
0: बिल्कुल
1: सही। ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका बाजार से कोई संबंध ना हो
0: जी,
1: क्योंकि आज तो बाजार का जो प्राधान्य है वो डरावना है, लेकिन आकाशवाणी में नहीं था, एक हद तक आज भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मुझे खुद बहुत बार अवसर मिला अपनी कहानी पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का
0: जी।
1: तो मुझे अक्सर कई बार छोटी छोटी जगहों पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनमें जो आपको हमको बताते हैं कि साहब आपकी हमने फलानी कहानी सुनी थी आकाशवाणी पे
0: जी, जी।
1: ये वो लोग हैं जिन तक पत्रिकाएं नहीं पहुंचती। साहित्यिक पत्रिकाओं की वैसे भी हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है, हमारा मध्य वर्ग तो पढ़ता लिखता नहीं है, तो हमारे साहित्य तो एक किस्म का बेघर साहित्य है। इस बेघर साहित्य को थोड़ी सी देर के लिए आश्रय या शरण आकाशवाणी देता रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी या कोई पत्रिका लेखक पैदा नहीं कर देती, लेकिन एक तरह से उन लेखकों को या उस संगीत को उसका उसके फैलाव के लिए को दूर तक ले जाने की जो जिम्मेदारी आकाशवाणी ने लंबे समय तक निभाई है, उसका हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम मैं एक लेखक के रूप में बहुत कृतज्ञ हूँ उसका
0: जी।
1: अगली और अंतिम बात यह है कि आकाशवाणी सुनते हुए आपके आप सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी वो इस तरह की, क्योंकि वो आवाज है, आवाज मूल है उसमें, उस वो आपको बांधता नहीं है, वो आपको खोलता है
0: जी।
1: तो आप सुनते समय आकाशवाणी का भले संगीत सुन रहे हो, आप भले कोई बातचीत सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई नाटक सुन रहे हो, कोई कहानी सुन रहे हो, आप खुलते हैं।

0: ये खुलाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए खुला हुआ नागरिक जरूरी है। एक बंद आज्ञाकारी नागरिक जो है वो डरावना होता है लोकतंत्र के लिए, वो कभी नहीं लोकतंत्र को चला सकता। तो आकाशवाणी ने एक तरह से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक हद तक भूमिका निभाई है और हम सबको उसका कृतज्ञ होना ही चाहिए।
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। आप आगे आने वाले समय के लिए क्या शुभकामना आकाशवाणी को देना चाहेंगे?
0: मैं सोचता हूँ, एक तो बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, आकाशवाणी कभी बंद ना हो। जिस तेजी से हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म होते जाते हैं उसके मैं बहुत ज्यादा उसके लिए आशान्वित हूँ कि ये बचा रहेगा। दूसरी बात ये मैं सोचता हूँ कि आकाशवाणी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है
1: जी,
0: उसे अधिक से अधिक स्वतंत्र स्वयं में होती जाना चाहिए। और ये सबके लिए सही है, ये बच्चे के लिए भी सही होता है, मेरे आपके लिए भी सही होता है। हम सारे लोग अगर स्वातंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रोथ, हमारा विकास नहीं हो रहा है। उसमें ज्यादा संगीत शामिल हो, ज्यादा लेखक कवि उसमें शामिल हो, ज्यादा उसमें तरह की बातचीत हो, जितनी अभी हो रही है उसे और ज्यादा हो, तो जैसे जैसे इस तरह का फैलाव आकाशवाणी का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, आकाशवाणी की पहुंच भी बढ़ेगी और हम भारत को एक दूसरे एक जगह को भारत की दूसरी जगह से जोड़ने का जो उसने दायित्व निभाया है उसका स्तर भी गहरा होता जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं आकाशवाणी को देता हूँ।
1: बहुत धन्यवाद। हम भी यही चाहेंगे और उम्मीद करेंगे, बल्कि यूं कहिए कि सक्रिय कोशिश करेंगे कि ये व्यापकता निरंतर बढ़ती रहे।

0: के 90 वर्ष की यात्रा में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी यादें, कौन सी बातें हैं जो आप आकाशवाणी को लेकर महसूस करते हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं।
1: तो मैं लगभग 25 साल तक निरंतर जुड़ा रहा आकाशवाणी से
0: जी,
1: 1969 से लेकर 1994 तक। सबसे बड़ी सौगात या सबसे बड़ा सौभाग्य हम कहें तो हमारा आकाशवाणी से जुड़ना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का, क्योंकि मैं आकाशवाणी को शुद्धता और उत्कृष्टता का केंद्र मानता था। उन्होंने अनुशासन सिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान से प्रेम करना सिखाया, स्वच्छता का पाठ, संस्कारवान बनाया और अच्छा साहित्य लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, मतलब हर तरह से हर वर्ग के लिए आकाशवाणी ने अपना योगदान दिया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाओं से युवा तक, वृद्ध जनों तक, किसानों तक, ग्रामीण लोगों तक, मतलब कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो आकाशवाणी से अछूता रहा हो
0: जी।
1: तो ये सबसे बड़ी देन है हमारे जीवन में। हम जीवन भर आकाशवाणी के सानिध्य को भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। उसी के बल पर हम अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जीवन में आकाशवाणी उत्कृष्टता का प्रतीक। मधुबन

90 वर्ष की ये यात्रा समय में बांधी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़कर इसके कई आयामों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला।

0: आकाशवाणी को किस रूप में आप देखते हैं और क्या इसकी अपनी भूमिका रही है?
1: मैं आकाशवाणी को इस तरह से याद करता हूँ कि जब 15 अगस्त 1947 को आधी रात भारत आजाद हो रहा था, उस दौरान आकाशवाणी ही वो स्वर था जिसने देश भर में आजादी की खुशी को पहुंचाया था। वहां से लेकर अभी तक की जो यात्रा है पूरी 90 वर्षों की, जितना विविध हमारा देश है, जिस सांस्कृतिक विविधता के साथ में, कला रूपों के साथ में हम जीते हैं, तो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखने वाले जो जो कारक हैं, उसमें आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की तरह मुझे दिखाई देता है। चाहे वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात हो, चाहे वो हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक की बात करें, देश अगर बंधा है तो जिन कारकों में बंधा है उसमें एक आकाशवाणी भी है।
0: इस आकाशवाणी का जो वो समय था जिसे आप अपनी पहली याद के रूप में महसूस करते हैं और अभी तक की जो यात्रा है, इसमें समय में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तकनीक में बदलाव आए हैं और उससे बढ़कर हमारे आपके सोचने के तरीके और आवश्यकताओं और ज़रूरतों में भी बदलाव आए हैं। इस दृष्टि से आकाशवाणी किस रूप में आपको महसूस होती है?
1: क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी सूचना की विश्वसनीयता, आकाशवाणी ने शुरू से लेकर अंत तक विश्वास की परंपरा को बनाकर रखा है। आज जबकि हर हाथ में मोबाइल है, सूचना का विस्फोट का समय है, AI हमारे ऊपर आ चुका है, ऐसे समय में जब हर जगह संदेह है, हर जगह हमको अविश्वास दिखाई देता है, वहां अगर विश्वसनीयता की बात हो तो अपने तमाम प्रोग्राम्स में, चाहे वो संगीत के कार्यक्रम हो, चाहे वो वार्ताएं हैं, चाहे वो चर्चाएं हैं, चाहे वो समीक्षाएं हैं या खबरों को पहुंचाने तक का पूरा मामला है, आकाशवाणी ने विश्वास की परंपरा को कायम रखा है, जिसके आधार पर पत्रकारिता कही है या ये कही है कि खबरों को पहुंचाने का जो तरीका है, ढंग भले बदला है लेकिन विश्वास की जो बात है वो आकाशवाणी के पर्याय के रूप में हम देख सकते हैं।
0: ये वाकई में आकाशवाणी के लिए और आकाशवाणी से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जो चीज़ हमारे घर परिवार और समाज से भी थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो विश्वास आज भी आकाशवाणी सहेज कर चल रहा है। उसकी अगली यात्रा को लेकर जहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हैं, क्या भविष्य या क्या अपेक्षा आप आकाशवाणी से रखते हैं?
1: जैसे मैं शुरू से एक बात जो रेखांकित कर रहा हूँ कि जितनी देश में विविधता है, आकाशवाणी उस महासागर की तरह है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखा है। चाहे वो फिल्म संगीत की बात हो, चाहे वो हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, चाहे खेल, कृषि, हमारी हेलो फरमाइट, तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, उसने देश की धड़कन को, देश की स्पंदन को महसूस किया है। अब ऐसे समय में जबकि तकनीकी रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैंने कहा कि कई तरह के अलग अलग तरह के चैनल्स भी आए हैं, उस दौर में अभी भी एक समाज है हमारा जहां तक आकाशवाणी के अलावा कोई पहुंचा नहीं है। यहाँ वो समाज केवल पहुंच वाला नहीं है, वो समाज है विश्वास वाला समाज, वो जो आप कहां बात कही जा रही है जिस पर भरोसा करता है। और आप ये अचरज की बात नहीं है, कितनी खूबसूरत बात है कि लोग जो अपने पड़ोस में अपनी बात कहने से हिचकते हैं, वे आकाशवाणी में फोन लगाकर अपनी बात कहते हैं, अपने परिवार की, अपनी समस्याएं, अपने मनोदशा को वो व्यक्त करते हैं। तो तकनीकी रूप से इस चुनौती के बीच में, जैसे पत्थरों के बीच में नदी बहती है, आकाशवाणी को शायद इस परंपरा को बनाए रखते हुए पहुंच को और विस्तारित करना होगा और विविधता को बनाए रखना होगा। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों के बीच में हम जैसे लौट रहे हैं पुरानी तरफ, उस तरह से आकाशवाणी का एरा भी उसने स्वर्णिम युग को फिर से दोहराएगा।
0: आपके इस बात को सुनके सिर्फ तथास्तु कहने का दिल चाह रहा है, क्योंकि हम खुद भी चाहेंगे कि हमारी ये नदी कल कल बहती रहे, लोगों की प्यास बुझाती रहे, अपने किनारों पर हरियाली देती रहे। और कहते हैं ना कि गौमुख से निकली गंगा जब तक गंगा सागर तक नहीं पहुंचती तब तक अपनी यात्रा पूरी नहीं करती है, तो ये निर्बाध चलती रहे। बस एक बात और आपसे जानने का मन हो रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक श्रोता के रूप में, आकाशवाणी की कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है आपको या जिससे आप जुड़ा महसूस करते हैं?
1: जैसे परिवार का एक, मतलब आकाशवाणी परिवार का हिस्सा है। हमारे परिवार के बुजुर्गों ने रेडियो सुनकर, रेडियो घर में होना एक अनिवार्यता की तरह होता था। आज जब हम गाड़ी में निकलते हैं और तमाम चैनल्स के बीच में अगर विविध भारती पर आकर ट्यून हो जाता है, रेडियो लंबे समय तक वो चलता है, तो वो एक परिवार के सदस्य की तरह जो हमें सहजता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो मनोरंजन करता है, जो ज्ञान देता है, तो ऐसे तमाम चीजें एक जगह से अगर कहीं मिल रही है तो उसमें मुझे आकाशवाणी दिखाई देता है। और इसीलिए उसको हम बहुत अपनापे के साथ में, बहुत स्नेह के साथ में हम आकाशवाणी

0: का नाम भी लेते हैं, उसके साथ जुड़ाव भी महसूस करते हैं।
1: आकाशवाणी का ये जुड़ाव, परिवार का ये एक अपनापन आपसे, हमसे, कार्यक्रमों से बना रहे सदा, यही कामना हमारी भी है। आकाशवाणी की इस यात्रा में, या यूं कहिए कि कार्यक्रम की इस यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं हमारे एक युवा शायर की ओर, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं अपनी शायरी को लेकर। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस कार्यक्रम में जो केंद्रित है आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आकाशवाणी की याद को लेकर?
0: जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस इतने अहम प्रोग्राम में मुझे भी याद रखा। वैसे तो हमारे घर में रेडियो बहुत पहले आ गया था, जब मैंने होश संभाला तो हमारे यहाँ रेडियो मौजूद था
1: जी,
0: और उसमें हमारे घर में अक्सर मिलकर रोजाना सुबह का समाचार बुलेटिन और रात का समाचार बुलेटिन बहुत पाबंदी से सुना जाता था।
1: जी जी।
0: उसके अलावा हवा महल, और हवा महल का एक कैरेक्टर मुंशी इतवारी लाल मुझे आज भी याद है। मैं उनकी अक्सर नकल किया करता था, लोगों को हंसाया करता था उनको सुना सुना के।
1: जी।
0: फिर सबसे ज्यादा जो एक चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी, रोमांचित करती थी, वो थी हॉकी की कमेंट्री। कमेंट्री जो आती थी वो ऐसा लगता था कि पूरे हम मैदान में बैठे हुए हैं, सामने हमारे मैच हो रहा है। और वहीं से फिर मेरे अंदर हॉकी खेलने का शौक भी पैदा हुआ, मैंने हॉकी भी खेली।
1: जी।
0: फिर उर्दू के जो प्रोग्राम, हाँ नहीं, उससे पहले तो बच्चों के प्रोग्राम गोपल और बाल सभा, वो मैं सुनता था जरूर, हमें सुनाया जाता था, बल्कि हमारी मदर कि ये सुनो देखो इसमें बच्चे कैसे बोलते हैं, क्या सुनाते हैं, तुम भी जाना है।
1: जी।
0: तो फिर जा तो नहीं पाया उसमें, लेकिन उसके बाद फिर मैं 83-84 में मैंने ऑडिशन दिया ड्रामा के लिए।
1: जी।
0: तो 85 में मैं कामयाब हुआ और 85 से मैं आकाशवाणी का आर्टिस्ट भी बन गया, ड्रामा आर्टिस्ट। काफी ड्रामा किए उसमें, बड़े अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ा जो फायदा मुझे आकाशवाणी को सुनने का, पहले सुनने का फिर बाद में जुड़ने का, ये हुआ
1: जी
0: कि भोपाल में रहने के नाते जो हमारी शैली है बोलने की या लहजा है, उस पर जो एक एतराज या किया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है कि भोपाली ऐसे बोलने, सारे लोग नहीं, जो दूसरे लोग जो लोग बोलते हैं आकाशवाणी से, उनका बोलने का लहजा सीखा, कहाँ है और है में क्या फर्क है, मैं और मैं में क्या फर्क है। फिर मैं थिएटर से भी इसी वजह से जुड़ा, बल्कि पहले थिएटर में जुड़ गया था, बाद में आकाशवाणी में आया। तो आकाशवाणी ने सबसे ज्यादा मुझे सिखाया कैसे बोलना है। और दूसरी एक चीज बहुत जो सबसे ज्यादा अहम चीज है, वो है वक्त की पाबंदी।
1: बिल्कुल।
0: दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर 9 बजे का कोई प्रोग्राम है तो 9 बजे ही वो प्रसारित होगा।
1: जी जी।
0: तो ये चीज हमें अपनी लाइफ में भी मैंने उतारी, उसको सीखी, और मुझे उसका जो इनाम मिला वो ये है कि मेरी बहनें जो हैं वो मुझ पे इतना भरोसा करती हैं कि नहीं, इसने अगर कह दिया इस वक्त तो ये आएगा,
1: क्या बात है,
0: और इसने अगर ये काम करने का ठान लिया है तो ये करेगा। मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ अगर कहीं से सीखा है तो उसका इनाम मुझे घर से ही मिल गया। दूसरी तो खैर तभी जानते हैं कि आज तक दुनिया का जो सबसे ज्यादा पहुंचने वाली आवाज है वो आकाशवाणी ही पहुंचती है, भले ही कितने मीडिया आ जाए, सोशल मीडिया और ये वो सब, लेकिन सबसे ज्यादा जो पहुंच है वो आकाशवाणी की है। और आकाशवाणी का से बहुत फायदा मुझे ये भी हुआ कि मेरा नाम भी बड़ी दूर दूर तक लोग जानने पहचानने लगे। अगर कहीं मैंने जाके अपना नाम बोले, हाँ सुना है आपका नाम, जानते हैं।
1: जी जी जी। कुछ और कहना चाहेंगे?
0: शुभकामनाएं तो ये है कि जो लोग अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आकाशवाणी से जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिखने पढ़ने का शौक पैदा होगा और उससे ये है कि कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, नपी तुली बात करने का सलीका भी वो लोग सीख सकते हैं आकाशवाणी से जुड़ करके, जो आमतौर पर लोगों में होता नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइम की जो लिमिट है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी चीज वक्त की पाबंदी, और वक्त की उस लिमिट में बहुत बड़ी और बहुत सारी बात कह देना। जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो अच्छी तरह आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़े, और अगर नहीं जुड़ते तो उसको आकाशवाणी को सुने। दूसरे जो आजकल चैनल आ गए हैं उनका अपना स्टाइल है, वो कमर्शियल है, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा सकारात्मक संदेश दिए हैं। मैं 2-4 शेर आपको सुना देता हूँ।
1: स्वागत है
0: जी। मेरी बड़ी मशहूर गजल है, मतलब उसका है कि बुरा होकर भी वो अच्छा बहुत है, बुरा होकर भी वो अच्छा बहुत है, वो जैसा है नहीं बनता बहुत है, वो जैसा है नहीं बनता बहुत है। और दो तीन शेरी सुनाऊंगा इसके के उसी से बात करना है कि जिसने उसी से बात करना है कि जिसने हमें समझा नहीं पूछा बहुत है, हमें समझा नहीं पूछा बहुत है। और एक ये शेर आखिरी शेर है कि हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत है, हमारा रास्ता सीधा बहुत है।
1: बहुत खूब,

0: हमारे साथ हैं अभय फगरे, आप ख्यात बांसुरी वादक जिनकी बांसुरी की मधुर तान आपने कईयों बार आकाशवाणी से सुनी होगी। स्वागत है अभय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। आप आकाशवाणी को लेकर क्या महसूस करते हैं या वो क्या अनुभव है आपका जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं?
1: नमस्कार मिता जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी के सारे परिवार को बधाइयां देता हूँ कि 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के और आप उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जहाँ तक आकाशवाणी का मेरे दिल में या मेरे कार्य में योगदान है और मेरा क्या उसके अंदर योगदान है, इसके अंदर तो बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, पर बहरहाल संक्षेप में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
0: स्वागत।
1: और आकाशवाणी का मैं शायद संगीतकार के रूप में हम लोगों की जनरेशन लगभग मतलब जो स्टाफ आर्टिस्ट भी रहे हैं उन लोगों के लगभग अंतिम जनरेशन है हम लोगों की
0: जी।
1: और हम लोगों ने जितना हमारे जीवन में आकाशवाणी का क्या इतना अद्भुत महत्व है कि हम बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, पर आकाशवाणी ने जैसे हम लोगों को संगीत के लिए प्रेरित किया है और संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इतना अधिक संगीत और खासकर शास्त्रीय संगीत जिसे हम राग संगीत कहते हैं, ये हमने रेडियो से आकाशवाणी के माध्यम से ही हमें सब समझ में आया है। और ये हमारी मेरा सौभाग्य है कि मैं अंततः आकाशवाणी कलाकार के रूप में अपने सेवाएं आकाशवाणी को दे पाया और वहीं से फिर मैं अंततः रिटायर हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे संगीत जगत में और संस्कृति में अगर हम और बृहत रूप से देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को सहेजने के माध्यम के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है
0: जी। आप आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी आपने सेवाएं लंबे समय तक दी हैं। यदि इससे अलहदा बात की जाए तो पूरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लेकर या उसके कल्चर को लेकर या उसकी किसी विशेषता को लेकर आप कौन सी बात ऐसी महसूस करते हैं जिससे आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, जुड़ना चाहते हैं या आज भी अपनापन महसूस करते हैं?
1: सबसे बड़ी बात तो है कि इसका धरातल पूरा का पूरा भारतीय है
0: जी।
1: मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने आइडियाज कहीं से बाहर से बारो नहीं करते थे। यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होता था उसकी वैल्यू में भारतीयता सबसे ज्यादा झलकती थी, ये मुझे हमेशा लगा है। और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता था, जैसे कि हमारे उत्सवों के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनते थे पहले और वो उत्सव मतलब पूरे साल भर में जितने भी उत्सव होते थे उनके प्रोडक्शंस हुआ करते थे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में रेडियो पे होते थे, वो उसका कोई पैरेलल नहीं था।
0: भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और जो हमारे जीने का आधार है वो यदि हमें कहीं से मिलता रहता है तो बहुत सीधी सी बात है कि उसका आकर्षण, उसका लगाव या उसकी आत्मीयता हमें बांध कर रखती है।

0: आज एक उत्सव की तरह हम आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप एक ख्यात बांसुरी वादक रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना आपकी बात का समापन और इस कार्यक्रम का समापन एक उस छोटी सी बांसुरी की धुन से किया जाए, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध होते हैं, कार्यक्रम का समापन कर सकें।
1: जरूर जरूर।

बांसुरी की मधुर तान माहौल में रस घोल रही है। उत्सव की बेला अपने उत्कर्ष पर है। उत्सव जो 9 दशकों की यात्रा की निरंतरता का है। उत्सव है हमारे

आपके भरोसे का, हमारे आपके साथ का, प्रीत की डोर से बंधे हमारे सपनों, उम्मीदों और प्रेम का, आने वाले समय और रोशनी का, जिसकी उजास दे रही हैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद आपको, हमको

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधे श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम। प्रस्तुति थी अमिता त्रिवेदी की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत झुक गया आसमां। इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित एवं स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदन ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopeyear@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: राम ये नाम इस महादेश की चेतना में रचा बसा है। प्रभु श्री राम की

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग 3।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियो मैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना नारायणी बसुमती के सामने लोक निंदा के भय से आत्महत्या करने की बात कहती है। बसुमती उसे गर्भवती होने की बात छिपाकर शिबू के साथ गौना करने का सुझाव देती है। शिबू गौना कराकर नारायणी को अपने घर ले आता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं। यूनियन की आम सभा में यशवंत को यूनियन का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ब्राह्मण महाराज की मौत हो जाती है तो शिबू बेकार हो जाता है। बसुमती शिबू के घर आती है और 50 मजदूरों को साई नदी की साइड पर चल रहे काम पर ट्रांसफर करने की बात बताती है। उसी समय नारायणी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बसुमती नारायणी की गर्भवती होने की खबर सुनाती है तो शिबू बहुत खुश होता है। साई नदी की साइड पर आने के बाद शिबू की लिचू से मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक बलबीर स्वामी यशवंत से मिलता है और मजदूर हड़ताल की सूचना देता है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब

0: बहुत दर्द हो रहा है।
1: नारायणी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
0: नहीं, लगता है प्रसव का समय आ गया।
1: हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे किसके पास जाऊं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
0: सुनो जी, तुम जल्दी से जाकर काकी को बुला लो।
1: ठीक है, मैं जाता हूँ काकी को बुलाने। तुम चिंता मत करना, मैं अभी काकी को बुलाकर आता हूँ।
0: क्या करूं, क्या करूं मैं? पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि काकी के आने से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ विद्यावासिनी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो माँ मेरी।
2: नारायणी, चिंता ना कर नारायणी, हम आ गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं बेटी।
0: काकी, काकी मेरी जान निकलती जा रही है, बहुत पीड़ा हो रही है काकी।
2: बस बेटिया बस, एक पीड़ा सह ली।
1: नारायणी,
2: अरे शिबुआ, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चल जा, जा बाहर जा।
1: अच्छा काकी।
2: बस नारायणी, बस बस बस बस बस बस, प्रसव होने वाला है। हाँ, तू चिंता न कर। माँ विंध्यवासिनी का नाम जप कर, माँ विंध्यवासिनी तेरा सब कष्ट हर लेंगी। ये क्या हुआ? अरे अरे, बच्चा तो पैदा होते ही मर गया। और नारायणी, नारायणी को भी होश नहीं है। क्या करें हम? हे भगवान, क्या करें हम? ये पानी का छींटा इसके मुंह पर डालते हैं, होश आ जाएगा। ये ठीक रहेगा। नारायणी, नारायणी, नारायणी, मेरी बच्ची,
0: मेरा बच्चा कैसा है काकी? बोलो ना काकी, मेरा बच्चा कैसा है?
2: छाती पर पत्थर रख ले नारायणी, छाती पर पत्थर रख ले।
0: क्यों?
2: तेरा लड़का पैदा होते ही भगवान को प्यारा हो गया।
0: नहीं
2: ना बिटिया, ना, ना रो बिटिया। अरे बिटिया ना, अरे जो भगवान को मंजूर है वो ही होता है। अरे अपने को संभाल नारायणी,
0: नारायणी
2: अपने शरीर को तो देख, हाय हाय कितना कमजोर है। ना बेटी, बेटी ना, ना, ना मेरी बच्ची ना।
0: आप ठीक कहती है काकी, मैं अपने को संभालने की कोशिश करती हूँ।
2: हाँ बेटी,
0: वैसे भी वो मेरे पाप की निशानी थी।
2: बेटी तू,
0: भगवान ने, माँ विंध्यावासिनी ने मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर दिया। बेटी, लेकिन काकी मैं क्या करूँ? मेरे सीने में जो माँ का दिल धड़क रहा है, उस दिल को कैसे समझाऊं काकी?
2: भगवान पर विश्वास रख नारायणी, भगवान पर विश्वास रख, भगवान सब भला करेंगे। बस बेटी,
0: आती हूँ
1: काकी। काकी, काकी, क्या हुआ काकी? नारायणी तो ठीक है ना?
2: हाँ बेटा, नारायणी तो बिल्कुल ठीक है, पर बेटा
1: क्या हुआ?
2: बेटा तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया।
1: क्या, क्या बोले तू? क्या बोले?
2: हाँ बेटा।
1: नहीं नहीं, अरे
2: नारायणी बड़ी बलवान है बेटा।
1: अरे नहीं,
2: होनी बड़ी बलवान है।
1: अरे नहीं काकी,
2: होनी बड़ी बलवान है।

0: नारायणी, ए नारायणी, कहाँ जा रही हो?
1: मजूरी करने।
0: मजूरी करने? पर अभी दो दिन पहले ही तो। नहीं नहीं नहीं नारायणी, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मजूरी करने नहीं जाने दूंगा। अरे देख तो, तू कितनी कमजोर है, और अभी अभी मजूरी, नहीं नहीं नहीं, देख तू अभी मजूरी नहीं कर पाएगी।
1: नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं नारायणी नहीं, देख देख इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा।
1: आप समझते क्यों नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मजूरी करते हुए मर जाऊं। मुझे काम पर जाना ही होगा।
0: नारायणी, नारायणी।

0: मैं अपने को संभालने की कोशिश करती हूँ।
1: हाँ बेटी।
0: वैसे भी वो मेरे पाप की निशानी थी।
1: बेटी तू
0: भगवान ने माँ विंध्यवासिनी ने मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर दिया। लेकिन काकी मैं क्या करूं? मेरे सीने में जो माँ का दिल धड़क रहा है उस दिल को कैसे समझाऊं काकी?
2: भगवान पर विश्वास रख नारायणी, भगवान पर विश्वास रख, भगवान सब भला करेंगे।

0: दियो काकी,
1: काकी, काकी, क्या हुआ काकी? नारायणी तो ठीक है ना?
0: हाँ बेटा, नारायणी तो बिल्कुल ठीक है, पर बेटा
1: क्या हुआ?
0: बेटा तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया।
1: क्या? क्या बोले जो? क्या बोले?
0: हाँ बेटा।
1: नहीं, नहीं।
0: होनी बड़ी बलवान है बेटा।
1: अरे नहीं।
0: होनी बड़ी बलवान है।
1: अरे नहीं काकी।
0: होनी बड़ी बलवान है

0: नारायणी, ए नारायणी, कहाँ जा रही हो?
1: मजूरी करने।
0: मजूरी करने? पर अभी दो दिन पहले ही तो। नहीं नारायणी, नहीं, मैं तुझे मजूरी करने नहीं जाने दूंगा। अरे देख तो, तू कितनी कमजोर है, अभी अभी मजूरी नहीं, देख तू अभी मजूरी नहीं कर पाएगी।
1: नहीं, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं नारायणी, नहीं, देख इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा।
1: आप समझते क्यों नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मजूरी करते हुए मर जाऊं। मुझे काम पर जाना ही होगा।
0: नारायणी, नारायणी, भगवान
2: नौता दिया ना।
3: ये पागलों वाली बात ना कर यशवंत। हम दलितों की लाइन में भला कौन आएगा? हम छोटी जात जो ठहरे।
2: अरे सुनो काका, दूसरे लोग भले ही हमें ईश्वर के सामने समान नहीं मानते हो, मगर हमारी नजर में सब समान हैं। हम सभी के बीच इंसानियत का रिश्ता जो है काका, और फिर न्योता देना तो हमारा कर्तव्य है। आना या ना आना उनकी अपनी इच्छा।
3: ठीक है यशवंत बेटा, मैं सभी को न्योता दे आऊंगा।
2: हाँ ठीक, ये हुई ना बात काका।
4: सुन भाई बामू।
5: बोल रहा हूँ।
4: अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चील गिद्धों का आहार बनकर रह जाएंगे।
5: क्यों भाई राम, क्यों?
4: देख बामू, जब हम चारे खेरा पर थे तो ठाकुर साहब की चापलूसी करके उनका विश्वास जीत लिया था। उसके बाद हमने वहाँ खूब चोरियाँ की, मगर भला हो ठाकुर साहब का, हम कभी पकड़े नहीं गए।
5: तू बिल्कुल ठीक कहता है रामू। यहाँ तो काम करना पड़ता है, तब जाकर हमारा पेट भरता है।
4: और भैया बामू, काम करना हमारे बस का रोग है नहीं। काम किए बिना हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तब क्या हमारी लाश को चील और गिद्ध नोच नोच कर नहीं खाएंगे?
5: अरे नहीं रामू भाई, नहीं। अरे तेरी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता भाई। कुछ सोच सोच भाई।
4: अरे सोच, चुप तो कर पहले, मुझे कुछ सोचने दे।
5: सोच ना। भाई, तूने कुछ देखा?
4: हाँ, देखा। अभी एक जीप आकर रुकी है।
5: हाँ, पर रामू भाई, ये जीप में कौन आया होगा?
4: अरे बामू, वो देख, जीप से कोई उतर रहा है।
5: हाँ, अरे वो तो अपने ठाकुर साहब हैं। रामू, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे?
4: अरे सपना नहीं बामू, ये सचमुच के ठाकुर साहब हैं।
5: अच्छा?
4: अरे अपने चारे खेरा वाले ठाकुर साहब।
5: अरे तो फिर जल्दी कर, ठाकुर साहब के कदमों में गिर जा।
4: चल चल चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल।

0: अरे रामू बामू तुम दोनों
1: ठाकुर साहब, हमने तो आपको देखते ही पहचान लिया था।
2: अब देखिए ना ठाकुर साहब, आपके बिना हमारी क्या हालत हो गई है, सूख कर कांटा हो गए। सरकार
1: सरकार, आप यहीं पर रहने आए हैं ना?
2: अबे चुप। अरे खुद ही बोले जाएगा या

0: ली हमारी थाली भगवान। जब ठाकुर साहब यहाँ आ गए हैं तो हमारे दुखों का अंत समझो।
1: ठाकुर साहब, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
2: अभी तो मैं 3-4 दिन व्यस्त हूँ। हाँ, इतवार को मेरे घर आ जाना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
1: ठाकुर साहब की
0: जय हो।
1: ठाकुर साहब की
0: जय हो।
1: ठाकुर साहब की
0: जय हो।
3: पूजा संपन्न हुई, आरती का समय हो गया है। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, भगवान सत्यनारायण की आरती गाएं।

0: लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की
1: जय।
2: शंभू काका, अब आप सभी भक्तों में चरणामृत और प्रसाद का वितरण कर दीजिए।
3: ठीक है, लो भाई लो, चरणामृत लो, प्रसाद लो, लो बेटा लो, तुम भी लो,
4: मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए,
5: मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए।

0: एसपी साहब, आप मुझे बुलवा लिया होता। आइए आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए, आइए आइए।
1: देखो ठाकुर, अगर तुम्हें बुलाने से काम निकल सकता तो मैं ऐसा ही करता। अगर ऐसा नहीं किया तो इसलिए कि यहाँ आए बिना मेरा मकसद हल हो ही नहीं सकता था।
0: ठीक है सरकार, तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।
1: ठाकुर, जानते हो मेरी पोस्टिंग विजिलेंस ब्रांच में है।
0: जी, क्या विजिलेंस ब्रांच?
1: हाँ।
0: लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर विजिलेंस वालों को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: एक बात बताओ ठाकुर।
0: कही सरकार।
1: जिस समय साई एक्वेडक्ट की आधारशिला रखवाई गई थी, उस समय मंत्री जी के लिए आप लोगों ने एक मंच बनवाया था।
0: देखिए एसपी साहब, यहाँ पर मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, अब फिर भी दूसरे अफसरों से पता चला है कि मंत्री जी के लिए यहाँ पर एक मंच बनवाया गया था।
1: इस मंच को बनवाने में कितना समय लगा था?
0: सर, वो इस सवाल का जवाब तो मैं स्टोर कीपर से ही पूछकर दे सकता हूँ।
1: ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सीमेंट का खर्चा किसने दिया था? कंपनी ने या सरकार ने?
0: मेरे ख्याल से सीमेंट सरकार ने दिया था और बाकी काम हमारे मजदूरों ने किया था।
1: तो ये खर्च का हिसाब किताब कहाँ है?
0: वो स्टोरकीपर के पास।
1: स्टोरकीपर के पास, ठीक है, हिसाब किताब की फाइल मंगवाइए।
0: फाइल? आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, मैं फाइल लेकर खुद आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा।
1: हाँ, ताकि तुम फाइल में मन माफिक फिर बदल कर सको।
0: अरे नहीं नहीं एसपी साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
1: हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ठाकुर, अभी इसी समय फाइल मंगवाओ, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा।
0: आप नाराज मत होइए सरकार, मैं अभी मंगवाता हूँ।
2: रामू बामू, अरे ओ रामू बामू, कहाँ मर गए दोनों? रामू बामू,
0: रामू तू एसपी साहब के लिए जाकर चाय लेकर।
3: बिल्कुल सरकार।
0: बामू
4: जी सरकार,
0: तू स्टोर कीपर से सन 1974 की फाइल मांग कर ला।
4: 1974 की फाइल?
0: एसपी साहब, ये फाइल 4 साल पहले की है, तब मेरी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। देखिए मेरा कोई दोष नहीं है।
1: ये तो हम देख लेंगे, जिसका भी दोष होगा, जिसने भी सीमेंट का गबन किया होगा, सरकार उसी को तलब करेगी। तुम्हें सूख कर काटा होने की कोई जरूरत नहीं है।
4: लीजिए लीजिए डॉक्टर साहब, मैं ये फाइल ले आया। लीजिए डॉक्टर साहब।
1: ए बामू, फाइल मुझे दो। सुना नहीं तुमने?
0: दे दे बामू, फाइल एसपी साहब को दे दे।
4: लीजिए लीजिए ये लीजिए।
1: सन 1974, हाँ यही है वो फाइल ठाकुर। अब ये फाइल हमारे पास रहेगी।

0: मगर एसपी साहब कंपनी की बदनामी तो होगी ही।
1: तुम अपना काम करो ठाकुर, विजिलेंस अपना काम करेगी। अगर सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे?
0: समझ गया एसपी साहब, बिल्कुल समझ गया।
1: अब हम चलते हैं।
0: वो चाय आ रही सकता।
1: चाय तुम पी लेना, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, समझे?
2: सरकार एसपी साहब गए फाइल भी लेना। लेकिन सरकार ये चाय
0: तू पी ले।
3: नारायणी, नारायणी, नारायणी।
4: चिल्ला का है रहा है शिबू।
3: काकी तुम, काकी मेरी नारायणी को क्या हुआ है? वो लीजू है ना, वो कह रहा था कि नारायणी की तबीयत ठीक नहीं है।
4: हमने ही तो भेजा था उसे।
3: नारायणी है कहाँ काकी?
4: सो रही है।
3: सो रही है? पर काकी वो ठीक तो है ना?
4: हाँ हाँ ठीक है नारायणी, ठीक है।
3: पर काकी वो लीजू, काकी तुमने लीजू से ऐसा क्यों कलवाया?
4: अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली शिबू। हाँ भगवान ने तेरी सुन ली। नारायणी का पैर भारी है।
3: हाँ, सच? अरे काकी काकी काकी।
4: अरे देखो मेरी बात सुन ले, लेकिन अपने दिमाग से सोच कर।
5: मजदूर भाइयों, यूनियन के नेताओं ने कंपनी के अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन कंपनी हमारी मांगों पर गौर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब हमारे पास अंतिम हथियार सिर्फ एक ही है और वो है हड़ताल।
6: लेकिन सुनिए, हमारे मजदूर भाई जानना चाहते हैं कि कंपनी के साथ यूनियन की किन मुद्दों पर बातचीत हुई है।
5: बहुत अच्छा सवाल किया यशवंत तुमने। यूनियन कंपनी के साथ 1975 में हुआ समझौता रद्द करवाना चाहती है।
3: लेकिन यूनियन ऐसा क्यों चाहती है?
5: क्योंकि ये समझौता मजदूर विरोधी है।
6: और मैंने सुना है कि ये समझौता भी यूनियन ने ही किया था।
5: ठीक सुना है तुमने। दरअसल तब के यूनियन नेताओं को कंपनी ने खरीद लिया था। जब इस बात का पता चला तो पुराने नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया, यूनियन में नए नेताओं को रखा गया। हम 1976 से ही इस समझौते को रद्द करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल के बाद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पानी अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। अब हड़ताल होगी, आर पार की लड़ाई होगी।
4: ना ना नहीं नहीं, अरे हम हड़ताल नहीं करेंगे।
3: अरे काकी ये तू क्या कह रही है?
4: हम ठीक कह रहे हैं, हड़ताल से हिंसा होती है। अरे गांधी भगवान अहिंसा के पुजारी रहे ना, हा? तो हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए।
3: अरे चुप रह बुढ़िया तू।
6: बिल्कुल गलत बात कर रहे हो बलवीर बाबू। तुमने काकी को बुढ़िया कहा? अरे बसुमती काकी हम सबकी माँ की उम्र से भी बड़ी हैं। कम से कम उनसे तो तुम्हें तमीज से बोलना चाहिए। यो मजदूर भाइयों, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
3: नहीं बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा।
7: हम किसी मजदूर का अपमान सहन नहीं करेंगे,
3: नहीं करेंगे।
5: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ये सभा आप लोगों के हित के लिए बुलाई गई है। हड़ताल आप लोगों के हित में होगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी यूनियन का साथ दें, यूनियन का विरोध न करें और जोर से नारा लगाएं हमारे साथ, मजदूर एकता
8: जिंदाबाद,
5: मजदूर एकता
8: जिंदाबाद,
5: मजदूरों पर अत्याचार
8: बंद करो, बंद करो।
5: मजदूर भाइयों, हड़ताल करने के लिए हमें किसानों का भी सहयोग लेना चाहिए, वो भी हमारी ही तरह मजदूर हैं। अगर मजदूर किसान एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी।
6: किसान मजदूर एकता
8: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
6: किसान मजदूर एकता
8: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
9: चल भाई बामू, चुपचाप यहाँ से खिसक ले। अरे अब हमारा यहाँ क्या काम?
10: तू ठीक कहता है रामू, ठाकुर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम हड़ताल की खबर सुनाएंगे तो वो हमें अंग्रेजी शराब पीने को देंगे।
9: अरे तो जल्दी चल, मेरी तो अभी से लार टपक रही है।
10: चल, चल, चल, चल, चल, चल।
5: तो मजदूर भाइयों, हमारी अगली सभा अब खेत में होगी। वहाँ पर लोकल लीडर शास्त्री जी भी आएंगे। आज की सभा संपन्न होती है। सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं।
11: चलो भाई चलो।
5: मजदूर एकता, मजदूर एकता।
4: हड़ताल करने चले हैं। अरे जब भूखा मरने की नौबत आएगी ना तब पता चलेगा। कर लो हड़ताल, हड़ताल करेंगे।

0: बधाई हो शिबू, बधाई हो। अरे औरतों को इकट्ठा करो, अरे गीत गवाओ, सोहर गवाओ, अरे खुशियां बनाओ, अरे खुशियां बनाओ।
1: काकी काकी ये तो बता क्या हुआ, लड़का या लड़की?
0: अरे चाचा राम पधारे तुम्हारे घर।
1: अरे वाह सच काकी, लो लो काकी ये लो, अरे गांठ में ये सिर्फ 5 का नोट है, अरे रख लो रख लो। मैं सभी लोगों को खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाबा, अरे मैं बाप बन गया।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना जंग लगी तलवार का भाग 3। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के हित में एनडीए सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के विकासखंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। वर्ष 1956 में इसे बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी के 591 रेडियो स्टेशनों से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में विश्वसनीय समाचार प्रसारित किए जाते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज राज्य के करीब 29 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमें ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारी दिनचर्या, खान पान, स्वच्छता के साथ ही बदलते मौसम के अनुसार बढ़ती गई सावधानियों पर भी निर्भर करता है। मौसम बदलते ही कई तरह की मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं, कभी तेज़ गर्मी, कभी उमस, कभी बारिश तो कभी अचानक तापमान में बदलाव, और यही बदलाव सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और पेट संबंधी संक्रमण जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना। इसके लिए हमें अपने भोजन में ताज़े मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें और पौष्टिक आहार शामिल करना बहुत आवश्यक है। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर भोजन शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देता है। श्रोताओं, इसके साथ ही हमें बाहर खुले में रखे कटे हुए फल, बासी या अस्वच्छ भोजन से भी बचना चाहिए। पीने के लिए हमेशा साफ, फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी ही उपयोग में लाना चाहिए। कई बीमारियां श्रोताओं केवल स्वच्छता की कमी के कारण भी फैलती हैं, इसीलिए स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। खासकर बरसात के मौसम में घर और घर के आसपास पानी जमा बिल्कुल ना होने दें। कूलर, गमले, खुले बर्तन या गड्ढों में जमे पानी में ही अक्सर मच्छर पनपते हैं, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना भी श्रोताओं लाभदायक होता है। इसके साथ ही अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम, योग या सुबह शाम टहलना भी शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। श्रोताओं, एक और ज़रूरी बात ये कि आपको यदि लगातार बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द, खांसी या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए आपको। स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर होता है। समय पर उपचार कई गंभीर समस्याओं से हमें बचा सकता है। श्रोताओं, अक्सर हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ ही बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं, इसीलिए यदि हम छोटी छोटी सावधानियों को अपनी आदत बना लें तो न केवल स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। और जब परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो जीवन का हर मौसम सुहाना लगता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक भेंटवार्ता का। चलिए तो आपको सुनवाते हैं फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी। डॉक्टर अभिनव साठे से बातचीत कर रहे हैं मनीष कछबीय।
1: श्रोताओ नमस्कार, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूँ मनीष कछबीय। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान समय में लगभग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बदलती जीवन शैली, लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत, खेलकूद में चोट या बढ़ती उम्र के कारण होने वाले दर्द आज एक आम समस्या बन चुके हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी न केवल दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीके विषय पर। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव साठे जी को। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के बारे में, कि आखिर ये फिजियोथेरेपी क्या है और दर्द प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका रहती है।
2: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसा संकाय है जिसमें जो पेशेंट है उनको फिजिकल थेरेपी द्वारा, मतलब व्यायाम के द्वारा, एवं उसमें जो एडवांस तकनीक है उसके द्वारा उनके दर्द का प्रबंधन किया जाता है। और दर्द जैसे कि हमें पता है कई प्रकार के होते हैं, तो मान के चलें मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, एवं खेल के बाद कोई चोट जो लगती है उसके दर्द के निवारण में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी जी जी, जो फिजियोथेरेपी होती है वह, उसको अगर हम सरल भाषा में अपने श्रोताओं को समझाना चाहे तो वह सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से उन चोटों को ठीक किया जाता है। किसी तरह की कोई मशीनरीज वगैरह होती है जिनकी हेल्प लेकर भी हम इलाज करते हैं जो भी पेशेंट है उनका।
2: जी सर, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार में उत्तर देना चाहूंगा। फिजियोथेरेपी जैसे कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संकाय है, स्वतंत्र रूप से इसमें कोर्सेस चलाए जाते हैं।
1: जी।
2: तो जिस

0: प्रकार का पेशेंट है, मान लीजिए ऑर्थोपेडिक पेशेंट है, मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड या कार्डियक इवन कुछ वेल्व सर्जरी के बाद, तो उस परेशानी से जब वो बाहर आ रहा है उसके अनुसार फिर फिजियोथेरेपी में कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो परेशानी होने से पहले, हम एक उदाहरण स्वरूप देख लें, जैसे उम्र के साथ जोड़ों में परेशानी आते हैं, तो हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं दर्द के साथ तो हम उनको पहले ही ऐसे एक्सरसाइज बता देते हैं जिससे डिटियोरेशन, जो कि जोड़ों में विकार आना है आगे चल के, वो कम से कम रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि एक अगेन पार्ट है हमारे फिजियोथेरेपी का ही, तो जिसमें एडवांस तकनीकों से, मशीनों से इसमें दर्द का निवारण एवं परेशानियों को दूर किया जाता है।
1: जैसे अभी आपने बात करी हमसे इलेक्ट्रोथेरेपी की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है और ये किस तरह से काम करती है।
0: जी, इसको भी मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। तो जब फिजियोथेरेपी संकाय सन 1950-60 के दौरान यूरोप प्रांत में जब ये डेवलप हो रहा था, तो उस समय फिजिकल थेरेपी के नाम से पहले जाना गया और फिर ये फिजियोथेरेपी की ओर आया। तो उस समय जो फिजिक्स, भौतिक चिकित्सा, इसलिए हम लोग हिंदी भाषा में इसको भौतिक चिकित्सक के रूप में भी हमको बताया जाता है, तो इसमें फिजिकल थेरेपी में, इलेक्ट्रोथेरेपी में जो मशीनें हैं, उदाहरण स्वरूप अल्ट्रासाउंड बता दूं, जो कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, एक जांच वाला अलग होता है, ये ट्रीटमेंट वाला अल्ट्रासाउंड होता है, लो लेजर करके एक थेरेपी होती है लो एम्पलीट्यूड पे उपयोग की जाने वाली, फिर कुछ ऐसे आइस थेरेपी, हीट थेरेपी, वैक्स थेरेपी, ये अलग अलग, या फिर डायथर्मी, एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो डायथर्मी को अगर मैं विस्तार से बताऊं तो इसका अर्थ होता है थ्रू हीट, तो हीट के द्वारा ट्रीटमेंट करना, जिसमें किसी ना किसी फिजिकल वे में, मतलब फिजिक्स के किसी सिद्धांत के ऊपर वो मशीन बनी होती है और अंत में उसका काम यही रहता है। मान लीजिए एक बैक एरिया है, पीठ का एरिया जहां दर्द है, उसको लगाने के कारण वहां का दर्द ठीक होता है, वहां की जो मांसपेशी है उसमें लचीलापन आता है, उस मांसपेशी में जो जकड़न आ गई है तो वहां पर खून का प्रवाह बढ़ाने से वहां पे वो लचीलापन भी वापस आ जाता है। तो इस तरीके से एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे एविडेंस बेस्ड इलेक्ट्रोथेरेपी भी हमें हेल्प करती है।
1: डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस तरह के दर्द से पीड़ित है और अधिकतर ऐसे कौन से दर्द लोगों में देखे जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन दर्द का निवारण संभव है।
0: जी, तो जैसे कि आजकल की हम जीवन शैली देख रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ वाली जीवन शैली है, और इसमें मैं विस्तार से बताना चाहूँगा, पहले यह देखा जाता था एक उम्र के बाद ही कुछ प्रकार के दर्द होते थे, बट आज के समय में जो हमारे मेन युवा हैं 30 से 45 वर्ष के आयु के, वो काफी प्रकार के दर्द या जिसको हम कहते हैं पेन से अफेक्टेड हैं, उसके पीछे उनका व्यवसाय, उनका काम करने का तरीका, कंप्यूटर का यूज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो आपने मेन सवाल किया कि कौन से दर्द, तो देखा जा रहा है गर्दन से संबंधित, जो कि पोस्चर से रिलेटेड है, शोल्डर हो गया, अत्यधिक ड्राइविंग के कारण जो हमारा टखना है, एंकल है, नीज है, इनमें भी देखा गया है। और गलत पोस्चर का सबसे बड़ा कारण जो कि बैक पेन है, वो भी ये कॉमनेस्ट, ये पांच जो कॉमन एरिया बताए, मैं फिर से बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने और टखने का दर्द, ये ज्यादा करके कॉमन देखा गया है और फिजियोथेरेपी इसमें काफी लाभकारी है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आधुनिक फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें और पारंपरिक उपचार पद्धति, इन दोनों की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है?
0: सर, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। तो जैसे जो हमारी पुरानी थेरेपी का पार्ट थी या उपचार के तरीके थे, वो भी अपने जगह उस समय मानव जीवन के लिए जरूरी थे, बट अब जब हम उसको कंपेयर करते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा, तो पहले का जो पद्धति था उसके पीछे ये था कि दर्द का निवारण बस। आज के समय में जब फिजियोथेरेपी किसी पेशेंट को या किसी रूप में दी जा रही है, तो सिर्फ दर्द का निवारण नहीं, उस दर्द के पीछे का कारण, उस कारण को दूर करना एवं वो कारण के वापसी ना हो और फिर से उस पेशेंट को उसी साइकिल में पेन, फिर ईज, फिर पेन, इसमें ना जाना पड़े, तो ये बहुत बड़ा एक गैप हम कह सकते हैं जो फिल किया है फिजियोथेरेपी ने, कि एविडेंस बेस्ड किसी सिद्धांत या किसी उसके पीछे क्या रोग के पीछे कारण था और वो फिर उसको दर्द में तब्दील हो गया था, उसको ठीक करने में काफी कारगर है फिजियोथेरेपी।
1: जी डॉक्टर साहब के द्वारा जो दी गई जानकारियां है वह निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को उससे लाभ मिलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा कारगर है फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन की बात करें जो स्पोर्ट्स पर्सन है तो क्या उसमें भी यह काफी ज्यादा असरदार है? और जो आजकल का जो समय है वो ज्यादा कॉम्पिटिशन का है, सभी लोग आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो उसमें यह कितना ज्यादा कारगर है फिटनेस की दृष्टि से भी खिलाड़ियों के?
0: सो सर, जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है श्रोताओं के लिए, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी या स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। इसको हम कह सकते हैं जैसे कोच ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है या खिलाड़ी के प्रदर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट उस प्रदर्शन के पीछे फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रोल है। इसको मैं दो भागों में बताना चाहूँगा इस सवाल का जवाब। तो पहली बात तो ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट जब एक खिलाड़ी के साथ रहते हैं तो मान लीजिए खेल के दौरान चोट होना स्वाभाविक है, खेल इतना तेज है या बैक टू बैक मैचेस हैं, तो उसमें तो वो ठीक करने में मदद करता ही है। जब ऐसी कोई इंजरी हो गई, मान लीजिए एक नी का लिगामेंट जैसे हम कहते हैं वो टियर हो गया और उसके उपरांत प्लेयर को सर्जरी के लिए जाना पड़ा, तो सर्जरी के बाद ब्रिंगिंग हिम बैक टू नॉर्मल, उसको नॉर्मलसी पे लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत बड़ा उपयोग साबित होता है पुनर्वास में, एवं खेल के दौरान, खेल के बाद, और वह इंजरी या जैसे मान ले बार बार टखने का मुड़ना वो ना हो तो उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग देना। सो प्रीहैब, रिहैबिलिटेशन एंड एट द टाइम ऑफ इंजरी, ये तीनों डोमेन फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए कवर करते हैं जो कि उसके करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं।
1: जी तो क्या फिजियोथेरेपी दवाओं पर निर्भरता कम करने में भी मदद कर सकती है?
0: जरूर सर, ऐसे कई दर्द देखे गए हैं जहां पर फिजियोथेरेपी बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है और दर्द की दवाओं का उपयोग छोड़े जरूरत ही नहीं पड़ती है।
1: जी जी, शुरुआत में आपने बात करी थी बुजुर्गों की, जो बुजुर्गों में भी किसी तरह के जैसे जोड़ों के दर्द होता है, मांसपेशियों के दर्द होता है, तो आजकल ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जिसके उपयोग से इस दर्द से राहत मिलती है, खासकर हम बात करें बुजुर्गों को?
0: जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल किया सर। जो नियमित व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है या हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यह तो हमारे वृद्धजनों के लिए लाभकारी होती है। और जो कि आपने बोला आधुनिक क्या है, तो आज के समय में काफी टेलर्ड या काफी एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है जिसको मैं पहले बताना चाहूंगा, उसका नाम है फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम। मतलब जैसे कि हमें पता ही है कि वृद्धावस्था में कुछ बैलेंस इशू होने के कारण गिरने की संभावना बढ़ जाती है, मसल की ताकत कम हो जाती है, तो पहले से ही अगर इस फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम को किया जाए जो कि डेवलप्ड है वर्ल्ड लेवल पे और 8 से 10 एक्सरसाइज का यह प्रोग्राम है, तो ऐसा पहले से ही कराकर वृद्धजनों में जो गिरने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है, उससे आगे होने वाली ऑर्थोपेडिक जो परेशानियां हैं, फ्रैक्चर या बोन इंजरीज, वो भी कम हो सकती हैं और एक हेल्थी लाइफ को प्रमोट करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती
1: है। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे अभ्यास भी है जिन्हें लोग घर पर कर सकते हैं?
0: जरूर सर, फिजियोथेरेपी के ऐसे कई व्यायाम हैं जो कि आम जन अपने घर पर कर सकते हैं, बस इसमें यही है कि आपके लिए क्या जरूरी है उसके लिए आपको एक योग्य और पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट को पहले दिखाना है, उसके अनुसार फिर वो आपको एक व्यायाम का पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर देंगे और फिर उसे आप अपने घर पर कर सकते हैं।
1: जी, हम अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे अगर वो किसी भी तरह की कोई फिजियोथेरेपी करना चाहे तो स्वयं से ना करे, सोशल मीडिया से देख कर ना करे, सोशल साइट्स पे जाकर ना करे, बल्कि जो पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे सलाह लेकर ही किसी तरह की कोई एक्सरसाइज घर पर करें। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी उपचार शुरू करने से पहले क्या हमें किन्हीं बातों का ध्यान देने की जरूरत है?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल है सर। जब फिजियोथेरेपी हमें शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आप एक पंजीकृत योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनके पास आप अपनी पुरानी कोई रिपोर्ट है, कोई जांच है या कहीं और किसी पद्धति का ट्रीटमेंट लिया है उसकी जानकारी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दें, और इसके अलावा और क्या उनकी पूर्व में सर्जरी या कोई और परेशानी है उसके भी फिजियोथेरेपिस्ट को बताएं। इससे क्या होगा सर, फिजियोथेरेपिस्ट जब आंकलन करेगा उस मरीज का तो उसको आसानी हो जाएगी और फिर उसके अनुसार क्या उसको दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है, उसमें आसानी होगी। मैं इसको उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा क्यों जरूरी है। जैसे कि एक हार्ट का पेशेंट आता है, हार्ट के पेशेंट में कोई वेल्व की सर्जरी हुई है जो कि एक अगेन एक मैग्नेटिक डिवाइस लगा है, तो हमारी फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी जो संकाय है वह कई जगह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिसका अर्थ है वेल्व जैसे सर्जरी है वहां पर नहीं दिया जा सकता, या कोई महिला है जो गर्भावस्था में में है उन्हें भी कई ऐसी मशीनें हैं, जब देखा जाए तो लगभग सभी मशीनें नहीं दी जा सकती। तो जितना डिटेल्ड में जितना विस्तार से पेशेंट अपने फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी जानकारियां देगा तो एक तो आंकलन करने में, असेसमेंट करने में, दूसरा ट्रीटमेंट डिजाइन करने में भी काफी मदद होगी।
1: जी निश्चित तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को जो भी यह कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे ताकि वे दर्द से बचाव और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रख सके?
0: मेरा हमारे श्रोताओं से यही कहना है कि आहार बहुत अच्छे से लें, संपूर्ण आहार लें, नींद अच्छी लें। ये बहुत बड़ा एक पहलू है हमारे स्वस्थ जीवन का। रोजमर्रा में कोई ना कोई तरीके का, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, इस प्रकार का कुछ व्यायाम करें, एवं कम से कम हमारे शरीर के जितने हमारे जो मेजर मेजर जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उनको मूवमेंट करने की कोशिश करें, बैलेंस ट्रेनिंग करें, और इससे आप स्वस्थ रहेंगे और जो हमारा फिट इंडिया का सपना है वो जरूर पूरा हो।
1: बिल्कुल अभिनव जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मनीष जी।
2: श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर अभिनव साठे से फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी ली और यही उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब एक बार फिर रुक करते हैं मनोरंजन की ओर और साथ मिलकर सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, टेक्नोलॉजी आज केवल हमारी सुविधा का माध्यम ही नहीं रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी पहले से अधिक आसान और प्रभावी बना रही है। इन्हीं से एक जो खास है इनमें, डिजिटल बायोमार्कर, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी जानकारी या संकेत जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एकत्र की जाती है, श्रोताओं, डिजिटल बायोमार्कर कहलाती है। सरल भाषा में कहें तो जब कोई स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, मोबाइल हेल्थ ऐप या अन्य कोई डिजिटल डिवाइस जो हमारे शरीर की गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को लगातार रिकॉर्ड करती है, तो उससे मिलने वाली जानकारियों को बायोमार्कर कहा जाता है। इनके द्वारा हार्ट रेट हमारा, नींद, चलने के कदम, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग या शरीर की अन्य गतिविधियों को स्वास्थ्य की स्थिति से समझने में मदद मिलती है। यानी श्रोताओं, सेहत अब जो है तकनीक से बेहतर होती जा रही है, या ये कहें कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन रही है। चलिए तो एक और गीत साथ मिलकर सुन लेते हैं।

श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते यही कहेंगे, कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजते रहें। पत्र लिखने का पता है कार्यक्रम स्वास्थ्य अर्पण, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। और अब फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर हम करते हैं नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य

0: एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
4: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
3: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
5: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
4: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कलाकार हैं आशीष श्रीवास्तव और साथी। इनसे सुनते हैं बुंदेली लोकगीत। पहले सुनते हैं स्वांग गीत।

0: राजेंद्र पारिक के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopaarbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हमने लिया है मुकेश का गाया हुआ। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम संगम।

0: मुकेश की आवाज़ में गाए फूल बने अंगारे फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे हैं। इंदौर में कल से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे।
1: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर आकाशवाणी को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए उनका कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन 3 सीटों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। भाजपा पहले ही 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 1 सीट के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। जून के शुरुआती दिनों में ही प्रदेश में औसत से 65% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पूरे प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश केवल 8.3 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। वहीं आज प्रदेश के करीब आधे हिस्से में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी पर स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी में कल 35वीं एनसीसी बटालियन के द्वारा आयोजित एनसीसी शिविर में कैडेटों ने रक्तदान किया। जबलपुर में बारिश से जलभराव की परेशानी से निपटने के लिए निगम आयुक्त ने आगामी 15 दिनों में नालों और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम के बनखेड़ी में साइकिल रैली का आयोजन कल किया गया। कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर 30 जून तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की

0: पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
1: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
6: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया।
7: आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
9: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
10: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
7: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
11: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
12: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार।

कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद से। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया रामचंद माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद, श्रेया, पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दत्तनेगी से भागवत वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद है आनंद बख्शी की शब्द रचना, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज़ किशोर कुमार की है और फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा अलिया, शोएब खान पोत्रा, मुश्ताबा खान, राउफ भाई शाहिद, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महाराष्ट्र बीड शहर से ये पत्र आया, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया और प्रदीप और केशव पटेल का। इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा वक्त फिल्म का गाना, जिसे गाया आशा भोंसले ने, धुन तैयार की रवि ने और गीत लिखा साहिल लुधियानवी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत कर्तव्य फिल्म का है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कफी लजर ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है उपाध्याय नगर देवा से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा शिवम, सुपर मार्केट देवा से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज और रानी सनी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल भगवान, गोविंद सालिग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, राजाराम नगर देवास से पत्र है राजू अग्रवाल, मधु राकेश अग्रवाल का। इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया ने।

प्रेम गीत फिल्म का अगला गीत गाया जगजीत सिंह ने। हिंदी वर ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया जगजीत सिंह ने ही। सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, यहीं से दान सिंह रावत, रानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत।

भाटापारा दतरेंगी से पत्र आया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा का। इन श्रोताओं ने सुनना चाहा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं की पसंद का अगला गीत। धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेन साहू। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से ये पत्र आया मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशिद रक्षित और समस्त राजावत परिवार का। इन श्रोताओं की पसंद है साथी फिल्म का गीत जिसे गाया मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत नौशाद का और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: साथी फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में जानकारी दी कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। प्रदेश के विकास खंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून 2026 को आयोजित तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33, शाम 6:30 और रात 8:35 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आजकल इसका समय है 6:40 पर। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान सशक्तिकरण, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:00। रात 9:30 पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, समय रहेगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा रसिक लाल अंधारिया का ख्याल गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं आशीष श्रीवास्तव और साथी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं स्वांग।

राजेंद्र पारिक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये राम स्तुति। इसके साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में है, जिसे हमने लिया घर फिल्म से, गुलजार की शब्द रचना, संगीत आर डी बर्मन का।

0: लगता है कि यहाँ मिल गया।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में हंसते जख्म का फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत सिर्फ तुम फिल्म से हमने लिया है, जिसे लिखा समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत है, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की है।

0: हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को। प्रवीण भारद्वाज ने इस गीत को लिखा था, संगीत था डब्बू मलिक का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में बताया कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। प्रदेश के विकास खंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 212,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 366,000 तक पहुँचने का लक्ष्य है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आज आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये डीटीएच का प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम आईना।

0: आदाब सामईन, आकाशवाणी भोपाल के उर्दू प्रोग्राम आईना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी दोस्त आफरीन बानो। आज के प्रोग्राम में हम उर्दू अदब की एक अहम अदबी रिवायत यानी तरक्की पसंद तहरीक और उसके असरात पर गुफ्तगू करेंगे। सामईन, उर्दू अदब की तारीख में तरक्की पसंद तहरीक ने एक नए फिक्री बाब का इजाफा किया। इस तहरीक से वाबस्ता अदीबों और शायरों ने अदब को महज तफरी या जज्बाती इजहार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे समाजी शऊर और इंसानी मसाइल के इजहार का जरिया बनाया। भोपाल को उर्दू जबान व अदब के एक अहम मरकज की हैसियत हासिल रही है। यहाँ की अदबी फ़जा, इल्मी इदारे, मुशायरे और अदबी नशस्तें उर्दू अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा करती रही हैं। इसी पस मंज़र में आज की पहली पेशकश है डॉक्टर मर्ज़िया आरिफ की तकरीर, तरक्की पसंद मुसन्निफीन और भोपाल। आइए सुनते हैं।
1: उर्दू ज़बान, उसका अदब, ख़ास तौर पर शायरी शुरू से तरक्की पसंदी की नुमाइंदगी करती है। तरक्की पसंद तहरीक ने पूरे इंसानी समाज के तारीख पहलुओं को रोशन करने पर जोर दिया, मगर उसकी तवज्जो ज़बान व अदब

तक दूसरों की खुशियों के लिए अपना तमाशा बनाते रहेंगे। ऐतराज़ करने वाले तो चांद में भी कमी निकाल देते हैं। आपको याद नहीं फराज भाई के वलीमे में क्या हुआ था? दुनिया भर के लजीज मुख्तलिफ किस्म के खाने बने थे, दुनियावी दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करा था, लाखों का लाइट डेकोरेशन, स्टेज की सजावट। लेकिन ऐतराज़ करने वालों की एक अलग ही जमात होती है, कहने लगे हाँ सब अच्छा था, बस ककड़ी कड़वी थी, पान और रख देते तो मज़ा आ जाता। अम्मी आप ऐतराज़ करने वालों से ना घबराएं। अर्जुमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा महरीन तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता और ना ही मैं तुम्हें किसी काम के लिए मजबूर कर सकती हूँ। अब जो चाहो करो, बस इतना ख्याल रखना ससुराल में अपनी मनमानी न करना, सबकी खुशी में राजी रहना। महरीन ने अम्मी के गले में हाथ डालते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में दिलासा देते हुए कहा मेरी प्यारी अम्मी आप इस बात से बेफिक्र रहें, मैं आजकल की लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों को लेकर शौहर और ससुराल वालों से झगड़ा करके घर बैठ जाती हैं। मैं अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाना जानती हूँ, मुझे मालूम है अपने शौहर और घर वालों के हुकूक़ कैसे अदा करना चाहिए। इतने में खाला अम्मी की ज़ोरदार आवाज़ आई अर्जुमन क्या कर रही हो, अय्यूब मियाँ को बुलाओ, निकाह में जाने का वक्त हो गया है, बाहर मर्द इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ महर की बात कर ली थी ना जितने मैंने कहे थे? हाँ आपा महर तो पहले ही तय कर लिया था, लेकिन हमने महर सिर्फ इतना ही रखा है जितना वो आसानी से वक्त पर अदा कर सकें। खाला अम्मी कुछ कहती इससे पहले ही अर्जुमन ने बात ख़त्म करते हुए कहा आप ज़रा अम्मी और शबाना बाजी को कॉल करके कह दें जल्दी तैयार होकर यहीं आ जाएं, सब साथ चलेंगे। शादी के घर में चारों जानिब अफरा तफरी हो रही थी, कोई कपड़ों पर प्रेस कर रहा था तो कोई अपने जेवरात निकाल रहा था। महरीन के कमरे में उसकी सहेलियां उसकी तैयारी में मदद कर रही थीं। आखिरकार सब तैयार होकर शादी हॉल पहुंच गए। महरीन के ऊपर आज जो नूर उतरा था हर कोई उसे देखकर दंग था, बिना पार्लर जाए इतनी हसीन लग रही थी। एक साहिबा ने पूछ ही लिया कौन से पार्लर गई थी, महरीन ने मुस्कुराते हुए कहा जी मैं घर पर ही तैयार हुई हूँ। अर्जुमन महरीन को स्टेज पर बिठाकर मेहमानों की मेज़बानी करने चली गई। महरीन के वालिद ने भी सबकी अच्छी तरह से मेज़बानी की, सबको मेज़ो कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलवाया जिससे खाने की फजूल बर्बादी नहीं हुई और जितना भी खाना बचा गरीबों मिस्कीन में तकसीम करवा दिया। बहरहाल महरीन की रुख्सती हो गई, खुशहाल वक्त गुजरता गया, महरीन अपने शोहर और ससुराल के साथ खुश थी। दूसरी जानिब फराज भाई खाला अम्मी के बेटे की ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला थी। उनकी शादी के वक्त दोनों जानिब से बारात व वलीमे में किसी किस्म की कोई कमी पेशी न रही थी, जिसके पास जितना था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खर्च किया। सारे अरमान निकाले गए थे, लोगों का कहना था ऐसे मौके बार बार नहीं आते, शादी ऐसी धूमधाम से करना चाहिए कि लोग ज़िंदगी भर याद रखें, चाहे इसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। कितना आसान होता है ये कह देना, लेकिन कर्ज अदा करना उतना ही मुश्किल होता है। कर्ज लेकर अगर आप किसी कारोबार में लगा दें तो शायद वापस भी मिल जाता है, लेकिन कर्ज का पैसा शोबाजी और आतिशबाजी के हवाले कर देने से वो सिर्फ बर्बाद होता है। घर वालों ने तो खूब शान व शौकत से दिखावे के लिए फजूल खर्ची कर दी, मगर अब जब फराज भाई बुरी तरह से कर्ज में डूबे हैं तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। उनकी बीवी उनसे खुश नहीं है, आए दिन ताने देती रहती हैं, जब माशी हालात अच्छे नहीं थे तो हमको झूठे दिखावे में क्यों रखा, आप लोगों की शान व शौकत से मुतासर होकर हमारे अब्बा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको हर चीज़ ब्रांडेड दी, हत्ता के कार भी लोन पर लेकर दे दी, आप कर्ज में डूबे हैं। खाला अम्मी जो हर वक्त महरीन की वालदा को ताना मारती थीं कितनी कस्मा पुरसी से शादी कर रही हो, सादगी का बहाना करके हर चीज़ में कटौती करती हो, अर्जुमन ने लाख समझाने की कोशिश की आपा ये सब फजूल खर्ची है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। आखिरकार आज वो खामोश नज़रें झुकाए

0: अपनी गलत सोच का एतराफ करते हुए कह रही थी, अर्जुमन तुम सही कहती थी, इस दुनियावी दिखावे में मैंने अपने बच्चों को इतनी परेशानी में मुब्तिला कर दिया। काश मैं शादी में कर्ज न लेती तो आज मेरा बेटा और बहू खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। इतनी शानदार शादी करने के बाद भी फ़ायज़ा फराज से अलहदगी चाहती है क्योंकि हम उसके मेयार के नहीं हैं। जैसा कि हमने जाहिर किया था, इंसान को अपनी चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए। महरीन सही कहती है, निकाह को जितना हो सके आसान बनाना चाहिए। चंद दिन बाद ही फ़ायज़ा फराज को छोड़कर चली गई। खाला अम्मी तन्हा उदास बैठी हुई हॉल की दीवार पर लगी फराज मियाँ की शादी की तस्वीर में दूल्हा दुल्हन के दरमियान आतिशबाजी, नोटों की बारिश, रिश्तेदारों की मस्नूई मुस्कुराहट को देखकर रो पड़ी। अब उनको अपनी गलतियों और दिखावे का एहसास हो रहा था। इसी दरमियान महरीन खाला अम्मी के घर जाती है। उनको रोता देखकर खामोशी से उनके पीछे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, जो हुआ सो हुआ खाला अम्मी, अभी भी वक्त है, हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। खाला अम्मी अपने आंसुओं को थामते हुए बोली, महरीन तुम सही कहती हो, अब आज से हमारे खानदान में कोई भी शादी कर्ज लेकर नहीं होगी। हम जहेज नहीं दुआएं देंगे, पछतावे के आंसू कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन आने वाले तूफान को ज़रूर रोक सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश इस समाज में बड़ा सुधार ला सकती है। अब हम सबको मिलकर इस समाज में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए।
1: अफसाना दिखावा समाप्त करने के बाद यकीनन आपने महसूस किया होगा कि अदब किस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हमारे सामने पेश करता है। इसी पैगाम के साथ हमारा आज का प्रोग्राम आईना अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप अपने खत हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है, उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। अब आपकी दोस्त आफरीन को दीजिए इजाज़त, आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की तीसरी कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार।

धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी बसुमती के सामने लोक निंदा के भय से आत्महत्या करने की बात कहती है। बसुमती उसे गर्भवती होने की बात छिपाकर शिबू के साथ गौना करने का सुझाव देती है। शिबू गौना कराकर नारायणी को अपने घर ले आता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं। यूनियन की आम सभा में यशवंत को यूनियन का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ब्राह्मण महाराज की मौत हो जाती है तो शिबू बेकार हो जाता है। बसुमती शिबू के घर आती है और 50 मजदूरों को साई नदी की साइड पर चल रहे काम पर ट्रांसफर करने की बात बताती है। उसी समय नारायणी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बसुमती नारायणी की गर्भवती होने की खबर सुनाती है तो शिबू बहुत खुश होता है। साई नदी की साइड पर आने के बाद शिबू की लिचू से मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक बलबीर स्वामी यशवंत से मिलता है और मजदूर हड़ताल की सूचना देता है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब आगे।

0: रानी? रानी?
1: बहुत दर्द हो रहा है।
0: नारायणी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: नहीं, लगता है प्रसव का समय आ गया।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे किसके पास जाऊं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
1: सुनो जी, तुम जल्दी से जाकर काकी को बुला लो।
0: ठीक है, मैं जाता हूँ काकी को बुलाने। तुम चिंता मत करना, मैं अभी काकी को बुलाकर आता हूँ।
1: क्या करूं, क्या करूं मैं? पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि काकी के आने से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ विद्यावासिनी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो माँ मेरी।
2: नारायणी चिंता ना कर, नारायणी हम आ गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं बेटी।
1: काकी मेरी जान निकलती जा रही है, बहुत पीड़ा हो रही है काकी।
2: बस बेटिया बस, एक पीड़ा से ली।
0: नारायण,
2: अरे शिबुआ, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चल जा, जा बाहर जा।
0: अच्छा अच्छा काकी।
2: बस नारायणी, बस बस बस बस बस बस, प्रसव होने वाला है। हाँ, तू चिंता न कर। माँ विंध्यवासिनी का नाम जप कर, माँ विंध्यवासिनी तेरा सब कष्ट हर लेंगी। ये क्या हुआ? अरे अरे, बच्चा तो पैदा होते ही मर गया। और नारायणी, नारायणी को भी होश नहीं है। क्या करें हम? हे भगवान, क्या करें हम? ये पानी का छींटा इसके मुंह पर डालते हैं, होश आ जाएगा। ये ठीक रहेगा। नारायणी, नारायणी, नारायणी, मेरी बच्ची,
1: मेरा बच्चा कैसा है काकी? बोलो ना काकी, मेरा बच्चा कैसा है?
2: छाती पर पत्थर रख ले नारायणी, छाती पर पत्थर रख ले।
1: क्यों?
2: तेरा लड़का पैदा होते ही भगवान को प्यारा हो गया।
1: नहीं
2: ना बिटिया, ना ना रो बिटिया। अरे बिटिया ना, अरे जो भगवान को मंजूर है वो ही होता है। अरे अपने को संभाल नारायणी,
1: नारायणी
2: अपने शरीर को तो देख, हाय हाय कितना कमजोर है। ना बेटी, ना ना मेरी बच्ची, ना।

0: आप ठीक कहती है काकी, मैं अपने को संभालने की कोशिश करती हूँ।
1: हाँ बेटी,
0: वैसे भी वो मेरे पाप की निशानी थी।
1: बेटी तो
0: भगवान ने, माँ विंध्यवासिनी ने मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर दिया। बेटी, लेकिन काकी मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो माँ का दिल धड़क रहा है उस दिल को कैसे समझाऊं काकी?
2: भगवान पर विश्वास रख नारायणी, भगवान पर विश्वास रख, भगवान सब भला करेंगे।

0: काकी, काकी, काकी, क्या हुआ काकी? नारायणी तो ठीक है ना?
1: हाँ बेटा, नारायणी तो बिल्कुल ठीक है, पर बेटा
0: क्या हुआ?
1: बेटा तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया।
0: क्या? क्या बोले जो? क्या बोले?
1: हाँ बेटा।
0: नहीं, नहीं। अरे नहीं।
1: होनी बड़ी बलवान है बेटा।
0: अरे नहीं।
1: होनी बड़ी बलवान है।
0: अरे नहीं काकी।
1: होनी बड़ी बलवान।

0: नारायणी, ए नारायणी, कहाँ जा रही हो?
1: मजूरी करने।
0: मजूरी करने? पर अभी दो दिन पहले ही तो। नहीं नहीं नहीं नहीं नारायणी, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मजूरी करने नहीं जाने दूंगा। अरे देख तो, तू कितनी कमजोर है और अभी अभी मजूरी। नहीं नहीं नहीं, देख तू अभी मजूरी नहीं कर पाएगी।
1: नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं नारायणी नहीं, देख देख इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा।
1: आप समझते क्यों नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मजूरी करते हुए मर जाऊं। मुझे काम पर जाना ही होगा।
0: नारायणी नारायणी, भगवान, हम गरीबों के भाग्य में दुखों का अंबार लगा हुआ है। अरे मुझसे बड़ा बदकिस्मत भला इस संसार में और कौन होगा? अरे मैं हट्टा कट्टा जवान, ये जवान मरण बेकार पड़ा हूं, और मेरी एक पसली की कमजोर पत्नी, अरे वो मजूरी करने गई है। ओ भगवान भगवान, मैं क्या करूं? संतान का मुख देखने के लिए कितनी उतावली थी मेरी नारायणी, मगर मगर भगवान, तूने उस अबला से वो सुख भी छीन लिया। क्यों क्यों छीना तूने उससे वो सुख? हे भगवान, अरे तेरी इच्छा के चलते ही अपनी संतान को साई में बहा देना पड़ा मुझे। अगर उसे कुछ हो गया ना, अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, उसे उसे उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो भगवान, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भगवान। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भगवान, उसे कुछ नहीं
2: होगा। शंभू काका, शंभू काका,
3: तू आ गया यशवंत।
2: अरे आपका बुलावा सुनकर नंगे पैर दौड़ा आया हूँ, कोई विशेष काम है मुझसे काका?
3: अरे पहले बैठ तो सही।
2: अब कहो शंभू काका, किस प्रयोजन से बुलाया है तुमने मुझे?
3: देखो बेटा, मैंने मनोती मांगी थी कि दलित समाज से यूनियन का प्रतिनिधि बनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करूंगा।
2: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है काका, बताइए कब करना है कथा पूजा का आयोजन?
3: परसों बेटा।
2: पंडित जी को कथा बांचने का निमंत्रण दिया कि नहीं?

0: गया था लेकिन निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
1: क्यों काका?
0: अरे हम दलित जो हैं, पहले तो आने के लिए बमहनाई की दुहाई देकर आने से मना करता रहा, हाथ पैर जोड़ने पर किसी तरह माना तो मुंह फाड़ कर दक्षिणा की मांग कर बैठा अन वस्त्र अलग से।
1: काका तो फिर पूजा कैसे होगी?
0: क्यों, क्या तू पढ़ा लिखा नहीं है?
1: अरे सो तो ठीक है काका, लेकिन ये मंत्र वंत्र मुझे कहाँ आता है?
0: क्या पंडित माँ के पेट से मंत्र सीख कर आता है?
1: नहीं तो।
0: अरे पंडित भी कथा की पुस्तकें पढ़कर ही मंत्र बांचता है, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता?
1: मैं समझ गया काका, सब समझ गया। आप कथा के आयोजन की तैयारियां कीजिए। और हाँ काका, दलित मजदूरों के अलावा दूसरे मजदूरों और कंपनी के अफसरों को भी कथा में आने का न्योता दिया ना।
0: ये पागलों वाली बात ना कर यशवंत, हम दलितों की लाइन में भला कौन आएगा, हम छोटी जात जो ठहरे।
1: अरे सुनो काका, दूसरे लोग भले ही हमें ईश्वर के सामने समान नहीं मानते हों, मगर हमारी नजर में सब समान हैं। हम सभी के बीच इंसानियत का रिश्ता जो है काका, और फिर न्योता देना तो हमारा कर्तव्य है, आना या ना आना उनकी अपनी इच्छा।
0: ठीक है यशवंत बेटा, मैं सभी को न्योता दे आऊंगा।
1: हाँ ठीक, ये हुई ना बात काका।
2: सुन भाई बामू।
3: बोल रहा हूँ।
2: अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चील गिद्धों का आहार बनकर रह जाएंगे।
3: क्यों भाई राम, क्यों?
2: देख बामू, हाँ। जब हम चारे खेरा पर थे, हाँ। तो ठाकुर साहब की चापलूसी करके उनका विश्वास जीत लिया था,
3: हाँ।
2: उसके बाद हमने वहाँ खूब चोरियां की, मगर भला वो ठाकुर साहब का हम कभी पकड़े नहीं गए।
3: हाँ, तू बिल्कुल ठीक कहता है रामू, यहाँ तो काम करना पड़ता है तब जाकर हमारा पेट भरता है।
2: और भैया बामू, काम करना हमारे बस का रोग है नहीं,
3: हाँ।
2: काम किए बिना हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तब क्या हमारी लाश को चील और गिद्ध नोच नोच कर नहीं खाएंगे?
3: अरे नहीं रामू भाई नहीं, अरे तेरी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप उठती है, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता भाई, कुछ सोच सोच भैया।
2: अरे सोच, चुप तो कर पहले, मुझे कुछ सोचने दे।
3: सोच ना। भाई तूने कुछ देखा?
2: हाँ हाँ देखा, अभी अभी एक जीप आकर रुकी है।
3: हाँ, पर रामू भाई, ये जीप में कौन आया होगा?
2: अरे बामू, वो देख, जीप से कोई उतर रहा है।
3: हाँ, अरे वो तो अपने ठाकुर साहब हैं। रामू, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे?
2: अरे सपना नहीं बामू, ये सचमुच के ठाकुर साहब हैं।
3: अच्छा?
2: अरे अपने चारे खेरा वाले ठाकुर साहब।
3: अरे तो फिर जल्दी कर, ठाकुर साहब के कदमों में गिर जा।
2: चल चल चल चल, चल, चल बाबू, चल चल चल।
3: पाय लागू ठाकुर साहब।
4: अरे रामू बामू, तुम दोनों?
2: ठाकुर साहब, हमने तो आपको देखते ही पहचान लिया।
3: अब देखिए ना ठाकुर साहब, आपके बिना हमारी क्या हालत हो गई है, सूख कर कांटा हो गए। सरकार
2: सरकार, आप यहीं पर रहने आए हैं ना?
3: अबे चुप। अरे खुद ही बोले जाएगा या ठाकुर साहब को भी कुछ बोलने देगा, हमें आशीर्वाद लेने देगा या नहीं? ठाकुर साहब ये तो नादान है
2: मालिक।
3: आप बताइए, ये चारे खेरा से यहाँ कैसे आना हुआ?
2: सरकार
4: मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर,
3: ट्रांसफर
4: चार्ज लेने आया हूँ।
2: कितना दयालु है, कितनी जल्दी हमारी
3: सुनी।
2: जब ठाकुर साहब यहाँ आ गए हैं तो हमारे दुखों का अंत समझो।
3: ठाकुर साहब, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
4: अभी तो मैं 3-4 दिन व्यस्त हूँ। हाँ, इतवार को मेरे घर आ जाना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
3: ठाकुर साहब की
2: जय हो।
3: ठाकुर साहब की
2: जय।
3: ठाकुर साहब।
1: पूजा संपन्न हुई, आरती का समय हो गया है, सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, भगवान सत्यनारायण की आरती गाएं।

0: एसपी साहब, आप मुझे बुलवा लिया होता। आइए आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए, आइए आइए।
1: देखो ठाकुर, अगर तुम्हें बुलाने से काम निकल सकता तो मैं ऐसा ही करता। अगर ऐसा नहीं किया तो इसलिए कि यहाँ आए बिना मेरा मकसद हल हो ही नहीं सकता था।
0: ठीक है सरकार, तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।
1: ठाकुर, जानते हो मेरी पोस्टिंग विजिलेंस ब्रांच में है।
0: जी क्या, विजिलेंस ब्रांच?
1: हाँ,
0: लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर विजिलेंस वालों को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: एक बात बताओ ठाकुर।
0: कही सरकार।
1: जिस समय साई एक्वेडक्ट की आधारशिला रखवाई गई थी, उस समय मंत्री जी के लिए आप लोगों ने एक मंच बनवाया था।
0: अब देखिए एसपी साहब, यहाँ पर मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, अब फिर भी दूसरे अफसरों से पता चला है कि मंत्री जी के लिए यहाँ पर एक मंच बनवाया गया था।
1: इस मंच को बनवाने में कितना सीमेंट लगा था?
0: सर वो इस सवाल का जवाब तो मैं स्टोर कीपर से ही पूछ कर दे सकता हूँ।
1: ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सीमेंट का खर्चा किसने दिया था? कंपनी ने या सरकार ने?
0: मेरे ख्याल से सीमेंट सरकार ने दिया था और बाकी काम हमारे मजदूरों ने किया था।
1: तो ये खर्च का हिसाब किताब कहाँ है?
0: वो स्टोर कीपर के पास।
1: स्टोर कीपर के पास, ठीक है, हिसाब किताब की फाइल मंगवाइए।
0: फाइल? आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, मैं फाइल लेकर खुद आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा।
1: हाँ, ताकि तुम फाइल में मन माफिक फिर बदल कर सको।
0: अरे नहीं नहीं एसपी साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
1: हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ठाकुर, अभी इसी समय फाइल मंगवाओ, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा।
0: आप नाराज मत होइए सरकार, मैं अभी मंगवाता हूँ।
2: रामू बामू, अरे ओ रामू बामू, कहाँ मर गए दोनों? रामू बामू,
0: रामू तू एसपी साहब के लिए जाकर चाय लेकर।
3: बिल्कुल सरकार।
0: बामू
4: जी, सरकार
0: तू स्टोर कीपर से सन 1974 की फाइल मांग कर ला।
4: 1974 की फाइल?
0: हाँ। एसपी साहब, ये फाइल 4 साल पहले की है, तब मेरी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। देखिए मेरा कोई दोष नहीं है।
1: ये तो हम देख लेंगे, जिसका भी दोष होगा, जिसने भी सीमेंट का गबन किया होगा, सरकार उसी को तलब करेगी। तुम्हें सूख कर काटा होने की कोई जरूरत नहीं है।
4: लीजिए डॉक्टर साहब, मैं ये फाइल ले आया। लीजिए डॉक्टर साहब।
1: ए बामू, फाइल मुझे दो। सुना नहीं तुमने?
0: दे दे बामू, फाइल एसपी साहब को दे दे।
4: लीजिए, ये लीजिए।
1: सन 1974, हाँ यही है वो फाइल। ठाकुर अब ये फाइल हमारे पास रहेगी।
0: मगर एसपी साहब, कंपनी की बदनामी तो होगी ही।
1: तुम अपना काम करो ठाकुर, विजिलेंस अपना काम करेगी। अगर सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे?
0: समझ गया एसपी साहब, बिल्कुल समझ गया।
1: अब हम चलते हैं।
0: वो चाय आ रही सरकार।
1: चाय तुम पी लेना, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, समझे?
4: सरकार एसपी साहब का फाइल भी लगा।
3: लेकिन सरकार ये चाय
0: तू पी ले।
5: नारायणी, नारायणी, नारायणी।
6: चिल्ला कह रहा है शिबू।
5: काकी तुम, काकी मेरी नारायणी को क्या हुआ है? वो लीजू है ना, वो कह रहा था कि नारायणी की तबीयत ठीक नहीं है।
6: हमने ही तो भेजा था उसे।
5: नारायणी है कहाँ काकी?
6: सो रही है।
5: सो रही है? काकी वो ठीक तो है ना?
6: हाँ ठीक है नारायणी, ठीक है।
5: पर काकी वो लीजू, काकी तुमने लीजू से ऐसा क्यों करवाया?
6: अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली शिबू। हाँ भगवान ने तेरी सुन ली। नारायणी का पैर भारी है।
5: सच? अरे काकी काकी काकी।
6: बातें सुन लेना, लेकिन अपने दिमाग से सोच के खुद ही
7: मजदूर भाइयों,

0: यूनियन के नेताओं ने कंपनी के अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन कंपनी हमारी मांगों पर गौर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब हमारे पास अंतिम हथियार सिर्फ एक ही है, और वो है हड़ताल।
1: लेकिन सुनिए, हमारे मजदूर भाई जानना चाहते हैं कि कंपनी के साथ यूनियन की किन मुद्दों पर बातचीत हुई है।
0: बहुत अच्छा सवाल किया यशवंत तुमने। यूनियन कंपनी के साथ 1975 में हुआ समझौता रद्द करवाना चाहती है।
2: लेकिन यूनियन ऐसा क्यों चाहती है?
0: क्योंकि ये समझौता मजदूर विरोधी है।
1: और मैंने सुना है कि ये समझौता भी यूनियन ने ही किया था।
0: ठीक सुना है तुमने। दरअसल तब के यूनियन नेताओं को कंपनी ने खरीद लिया था। जब इस बात का पता चला तो पुराने नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया, यूनियन में नए नेताओं को रखा गया। हम 1976 से ही इस समझौते को रद्द करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल के बाद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पानी अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। अब हड़ताल होगी, आर पार की लड़ाई होगी।
3: नहीं, अरे हम हड़ताल नहीं करेंगे।
2: अरे काकी, ये तू क्या कह रही है?
3: हम ठीक कह रहे हैं, हड़ताल से हिंसा होती है। अरे गांधी भगवान अहिंसा के पुजारी रहे ना, हाँ? तो हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए।
2: अरे चुप रह बुढ़िया तू।
1: बिल्कुल गलत बात कर रहे हो बलवीर बाबू। तुमने काकी को बुढ़िया कहा? अरे बसुमती काकी हम सबकी माँ की उम्र से भी बड़ी है। कम से कम उनसे तो तुम्हें तमीज से बोलना चाहिए। क्यों मजदूर भाइयों, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
2: नहीं बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा।
4: हम किसी मजदूर का अपमान सहन नहीं करेंगे,
2: नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
0: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ये सभा आप लोगों के हित के लिए बुलाई गई है। हड़ताल आप लोगों के हित में होगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी यूनियन का साथ दें, यूनियन का विरोध न करें, और जोर से नारा लगाएं हमारे साथ, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूरों पर अत्याचार
5: बंद करो, बंद करो।
0: मजदूर भाइयों, हड़ताल करने के लिए हमें किसानों का भी सहयोग लेना चाहिए, वो भी हमारी ही तरह मजदूर हैं। अगर मजदूर किसान एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी।
1: किसान मजदूर एकता,
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: किसान मजदूर एकता,
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
6: चल भाई बामू, चुपचाप यहाँ से खिसक ले। अरे अब हमारा यहाँ क्या काम?
7: तू ठीक कहता है रामू, ठाकुर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम हड़ताल की खबर सुनाएंगे तो वो हमें अंग्रेजी शराब पीने को देंगे।
6: अरे तो जल्दी चल, मेरी तो अभी से लार टपक रही है।
7: चल, चल, चल, चल।
0: तो मजदूर भाइयों, हमारी अगली सभा अब खेत में होगी। वहाँ पर लोकल लीडर शास्त्री जी भी आएंगे। आज की सभा संपन्न होती है, सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं।
2: चलो भाई, चलो।
0: मजदूर एकता, मजदूर एकता।
3: हड़ताल करने चले हैं। अरे जब भूखा मरने की नौबत आएगी ना, तब पता चलेगा। कर लो हड़ताल, हड़ताल करेंगे।

0: बधाई हो शिबू, बधाई हो। अरे औरतों को इकट्ठा करो, अरे गीत गवाओ, सोहर गवाओ, अरे खुशियां बनाओ, अरे खुशियां बनाओ।
1: काकी काकी ये तो बता क्या हुआ, लड़का या लड़की?
0: अरे छाछा राम पधारे तुम्हारे घर।
1: अरे वाह सच काकी, लो लो काकी ये लो, अरे गांठ में ये सिर्फ 5 का नोट है, अरे रख लो रख लो। मैं सभी लोगों को खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाबा, अरे मैं बाप बन गया।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की तीसरी कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होगी। बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए

0: रन बनाकर घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर ही सिमट गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

0: सदियों की गूंज समेटे जो हर दिल की बनी धड़कन है, क्षितिज पार से आती जो वो सुरीला सा एक बंधन है। गूंज उठा जब आकाशवाणी का वो पहला पावन स्वर, भारत के कोने कोने में जाग उठाता हर घर वर। 90 वर्षों का सफर सुहाना, सुरताल की अमीर कहानी। युग बदला तकनीक बदली पर अमर रही आकाशवाणी, युग बदला तकनीक बदली पर अमर रही आकाशवाणी। दोस्तों, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सालों से लगातार आकाशवाणी को इतना स्नेह देने के लिए। ये आप सभी का साथ है जो आज हम यहाँ तक लेकर आया है। आगे भी ऐसे ही स्नेह देते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सानिया आचार्य। और आज मेरे साथ हैं सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल से आदित्य कुमार पटेल, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं और आज हमारे साथ एक दिन के आरजे बने हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आज कार्यक्रम में आकर?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सान्या। नमस्ते श्रोताओं, मैं आदित्य कुमार पटेल आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आकाशवाणी भोपाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और आज मैं बहुत खुश हूं यह उपलब्धि हासिल करके। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में और चर्चा करेंगे कारपूलिंग, ट्रैफिक और प्रदूषण का स्मार्ट समाधान और मिशन लाइफ के बारे में।
0: जी हाँ दोस्तों, और आपको सुनवाएंगे 5 जून को सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश। अभी आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काई पोचे से।

0: गाय पोछे से अभी आपने गीत सुना दिव्य कुमार श्रुति पाठक की आवाजों में, संगीतकार अमित त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य कुमार पटेल।
1: दोस्तों आज विश्व महासागर दिवस है यानी वर्ल्ड ओशियन डे, जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हमारे जीवन में महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
0: बिल्कुल आदित्य, हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है। इस साल की थीम है महासागरों को बचाने के लिए नए प्रयासों, वैज्ञानिक खोजों और सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि अवेकनिंग न्यू डेप्थ्स। और हम अगर महासागर के महत्व की बात करें तो पृथ्वी की लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन महासागरों द्वारा ही पैदा की जाती है।
1: ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए भोजन और आजीविका का मुख्य साधन है और महासागर पृथ्वी के तापमान नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर ही है, जहां लाखों प्रजातियां रहती हैं।
0: बिल्कुल, और आज महासागर खतरे में है। प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज से हमारे समंदर खतरे में है। हम सभी को ये समझना होगा कि अगर महासागर सुरक्षित नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम सभी को ये बात समझनी होगी।
1: जी हाँ, और हमारे निरंतर प्रयासों से हम इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं, इसलिए मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। और हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए इसका ध्यान रखना होगा।
0: बिल्कुल आदित्य, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: ब्रह्मास्त्र से गीत अभी आपने सुना रिजीत सिंह की आवाज में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कार पूलिंग की। हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कार पूलिंग करना, ये बातों पर जोर दिया जा रहा है। रोज रोज अगर चार व्यक्ति एक ही एरिया से ऑफिस जाते हैं तो वो कार पूलिंग कर सकते हैं। ऐसे में वो पैसे भी बचा सकते हैं और प्रदूषण ना होने में भी योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सान्या, इससे ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी और स्ट्रेस फ्री राइड भी रहेगी। और अब तो आप ऐप के द्वारा भी कार पूलिंग कर सकते हैं। कार पूलिंग का सीधा और सरल अर्थ है एक ही दिशा या एक ही ऑफिस कॉलेज जाने की ओर जाने वाले दो या दो से अधिक लोगों द्वारा एक ही कार का इस्तेमाल करना।
0: जी, कार पूलिंग एक विकल्प नहीं बल्कि एक स्मार्ट चॉइस है। बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में कार पूलिंग का उपयोग कर रहे हैं। यदि हम सब मिलकर स्मार्ट समाधान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमें आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, शांत और प्रदूषण मुक्त भविष्य सौंप सकेंगे। तो हम यही कहेंगे, सफर साझा कीजिए और पर्यावरण बचाइए।
1: सान्या, हम आशा करते हैं कि कार पूलिंग के महत्व को हम सभी समझेंगे और इसे अपनाएंगे।
0: बिल्कुल आदित्य। दोस्तों अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश का। तो आइए सुनते हैं तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश।
2: सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नमन शर्मा है और मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल का छात्र हूँ और मैं अपना आखिरी वर्ष में हूँ मेरे डिप्लोमा में। और आज मैं भारतीय त्यौहार और संस्कृति मूल्यों के प्रचार में आकाशवाणी पे बोलना चाहूँगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक अनेक त्यौहार, अनेक अनेक संस्कृति मनाई जाती हैं। खासकर ऐसा देश जिसमें अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे त्यौहारों की संख्या, संस्कृति संख्या का लेखन करना असंभव है। और जैसे कि हमारे ज़्यादातर देश में ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ तक अलग अलग संस्कृति पहुँचाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। आकाशवाणी हमारे ग्रामीण देशों में अलग अलग जगह पे अनेक अनेक संस्कृतियों के संदर्भ में बोलने के लिए, लोगों को उनके बारे में बताने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे कि हमारे देश में ईद, दिवाली, पोंगल, क्रिसमस जैसे और भी अनेक त्यौहार हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता, पर वो हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्से में मनाए जाते हैं। उनके बारे में हमको बताने के लिए आकाशवाणी एक अच्छा माध्यम है। और अंततः एक देश जिसमें इतनी सारी संस्कृति हैं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे सिर्फ लोग सुन के ही चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्यौहार के माध्यम में अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें ये सारी चीज़ें पहुँचाने बहुत अच्छा माध्यम है। धन्यवाद।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ आदित्य कुमार पटेल एंड मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एस वी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। और मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संस्कृति के संरक्षण में आकाशवाणी की भूमिका। जिस तरह किसी राष्ट्र की संस्कृति जो होती है वो उसकी आत्मा होती है, उसी तरह एक आकाशवाणी जो है जो हमारे राष्ट्र की उस आत्मा की मधुर आवाज़ है। आकाशवाणी एक वो चैनल है जो हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की सेवा प्रदान करती है। आकाशवाणी एक रेडियो नहीं, वो माध्यम है जो जन जन तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाता है। और जो आकाशवाणी है वो भारतीय संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम करता है। जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ से जुड़ा रहता है, उस तरह आकाशवाणी अपनी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आकाशवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में 8 AM पे समाचार है, फिर उसके बाद इवनिंग में कुछ लोकगीतियाँ होती हैं और आफ्टरनून में कुछ संस्कृति गतिविधियों के बारे में बताते हैं। इससे ये रहता है कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको ये पता चलता है कि हमारे राष्ट्र में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन से कल्चर से कौन सा स्टेट बिलोंग करता है। उससे ये रहता है कि हमारी जो अभी नई पीढ़ी है उनको पता चलता है कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी ज़रूरी है और कितनी सक्षम है। थैंक यू।
4: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा गांधी है और मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है लोक संस्कृति और आकाशवाणी। भारत की असली झलक महानगरों की चकाचौंध में नहीं दिखती है, इनको हम हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनकी जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ी हैं, तो आप सबको ये पता होगा कि जो लोक संस्कृति है, जैसे लोक नृत्य हुआ, लोक संगीत हुआ, और देखा जाए तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने ये बखूबी देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो संस्कृति हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो बखूबी उनको निभाते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारी जो लोक संस्कृति हैं उन्हें आगे, हमारी आगे वाली जनरेशन है उस तक पहुँचाएँ। और आकाशवाणी ये काम बखूबी कर रहे हैं। मैं इस जनरेशन की होके भी आप मानेंगे नहीं कि मुझे भी मतलब आकाशवाणी बहुत पसंद है। जब मेरी मम्मी, मेरी नानी जैसे कि सदाबहार आते हैं, अभी भी आते हैं, तो उनके लिए मतलब वेट करते थे कि आज ये आना है, तो सब काम छोड़कर वो वेट करते थे। आकाशवाणी की बात करें तो मन में एक गहरे जुड़ाव का एहसास होता है दशकों से, विशेष ग्रामीण भारत में आकाशवाणी मनोरंजन समाचार। और कहा जाए तो आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो सेवा नहीं है, ये हमारे देश की आवाज़ है और एक सशक्त संचार है। धन्यवाद।
5: नमस्ते सर, टीचर, मेरा नाम मयंक है फ्रॉम आईटी ब्रांच। मुझे टॉपिक मिला है युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में आकाशवाणी की क्या भूमिका है। आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो ऐसे नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स पे म्यूज़िक सुनते हैं। आकाशवाणी हमें म्यूज़िक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कहने को देख लिया जाए तो हमें काफ़ी सारी संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है। और आकाशवाणी से हमें ये सुनने को मिलता है जैसे कौन से कल्चर क्या क्या होता है, ये सब जानने को मिलता है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हर स्टेट में अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो कौन से स्टेट में कौन सा त्यौहार किस तरह से मना जाता है, ये सब हमें आकाशवाणी पर सुनने के लिए मिलता है। थैंक यू सर।
0: दोस्तों, अभी आपने सुना आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश को। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसके प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। ये मिशन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर जीवन शैली में बदलाव लाने का एक जन आंदोलन है।
1: यह मिशन हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका संरक्षण कर सकें।
0: बिल्कुल, यदि आज हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकटग्रस्त पृथ्वी छोड़कर जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम सभी ने सुना है। इसी की तर्ज पर हमारे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रो प्लैनेट पीपल बने और इस धरती को हरा भरा और सुरक्षित बनाएं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। NALCO यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप नेल्को की ऑफिशियल साइट यानी कि NALCO.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून है। अधिक जानकारी के लिए आप NALCO.com पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनवाते हैं अगला गीत यमला पगला दीवाना से सोनू निगम की आवाज़ में।

दोस्तों भी आपने गीत सुना सोनू निगम की आवाज में, और जैसे कि आज आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं ये गीत गुड न्यूज से दिलजीत दोसांझ, ध्वनि भानीशाली और सुखबीर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और एक बार आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई।
1: हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको और हमारा साथ यूं ही बना रहे। आपके रेडियो दोस्त आदित्य कुमार पटेल
0: और मैं आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य लेते हैं आपसे इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख।
3: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: कवि हेमंत देवलेकर,
6: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लव फिल्म का यह गीत है। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने इसे गाया है। आनंद मिलन की धुन है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में दिलीप ताहिर का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, एस पी बाला सुब्रमण्यम ने गाया था। 100 डेज फिल्म का गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: कवि श्री राग तेलंग।
6: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह,
7: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेने वालों की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए क्योंकि एलआईसी को पहले से ही 7 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को वहीं अब जीएसटी पूर्व जांचें दी जा चुकी है। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।
2: आकाशवाणी मध्यप्रदेश की पेश है थर्माकोल से बनी प्लेट, खबरें,
1: कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष तथा कई राज्यों के विधानसभा प्रतिनिधि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि और ऋण बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक HPV टीकाकरण किया जा चुका है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। भारत ने एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी थी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
3: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
3: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
3: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
3: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
3: जी,
4: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बता

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई
3: हा?
4: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल, चल।
4: हाँ, हाँ,
3: हम
4: हाँ,
3: दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: हाँ,
3: हैं?
4: ठीक है,
3: चल,
4: ठीक है,
3: चल, चल,
1: चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग।

0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
1: कहाँ है कोची और मंगला है?
2: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलीमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे

0: उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं, राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब यह हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए

0: जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत किशोर कुमार, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती ने गाए हैं। गुलशन बावरा ने लिखा। आर डी बर्मन की धुन है।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा यह गीत था। उषा खन्ना और किशोर कुमार ने इसे गाया था। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल।

प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण, एक युग का संकल्प, जल की हर बूंद में भविष्य की धड़कन। आलेख है श्री प्रहलाद सिंह पटेल का। आप मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। यह वह क्षण है जब हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को याद करते हुए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करनी चाहिए जहां जल, जंगल और जमीन सुरक्षित हों। आज आवश्यकता केवल एक दिन के संकल्प की नहीं बल्कि आने वाले युगों तक चलने वाले जन संकल्प की है। पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं जल ही जीवन है, किंतु विडंबना यह है कि इस सत्य को समझने में हमें एक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा। आज यह संकट किसी एक मोहल्ले, शहर या राज्य और देश तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा एक वैश्विक प्रश्न बन चुका है। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक जल स्रोतों को तेजी से क्षीण करना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में पानी की प्रत्येक बूंद को सहेजना मानवता का सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। जल संकट की गंभीरता केवल पानी की कमी तक ही सीमित नहीं है। भूजल स्तर का निरंतर गिरना, नदियों का प्रदूषित होना, पारंपरिक जल स्रोतों का लुप्त होना और वर्षा जल का व्यर्थ बह जाना इस संकट के प्रमुख कारण हैं। गांवों और नगरों की जीवन रेखा रहे तालाब, बावड़ियां और कुएं आज उपेक्षा, अतिक्रमण और कचरे के बोझ तले दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृषि और उद्योगों में भूजल के अंधाधुंध दोहन ने स्थिति को और अधिक विकट बना दिया है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जलगंगा संवर्धन अभियान आशा की एक सशक्त किरण बनकर उभरा है। यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी पर आधारित एक सामाजिक आंदोलन है जिसका मूल मंत्र है जन सहयोग से जल संरक्षण और संवर्धन। इसका उद्देश्य जल संकट के मूल कारणों का समाधान करते हुए समाज को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वास्तव में नदी का उद्गम स्थल ऊर्जा का केंद्र होता है और जहां नदियों का संगम होता है वहां जीवन की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए नदियों के उद्गम और उनके प्राकृतिक स्वरूप की रक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पुराने तालाबों, कुओं, बावड़ियों और नदियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बारिश का पानी धरती में समाहित होकर भूजल स्तर को पुनर्जीवित कर सके। जल स्रोतों के आसपास व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है जिससे जल संरक्षण की प्राकृतिक प्रक्रिया मजबूत हो सके।

साथ ही नदियों में प्रदूषण रोकने और गंदे नालों के प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अभियान के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। जल संरचनाओं की सफाई और गहरीकरण से भूजल स्तर में सुधार हुआ है। अनेक ऐतिहासिक तालाबों और बावड़ियों का पुनर्जीवन हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता बढ़ी है। पानी चौपाल जैसे कार्यक्रमों ने लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की है और जल बचाने की संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। कृषि क्षेत्र में भी इस अभियान ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके। यह न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि का भी आधार बन रहा है। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास भी आवश्यक है। शहरों में अपशिष्ट जल का शोधन कर पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है और व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें पानी की बर्बादी रोकने की आदत विकसित करनी होगी। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक कोई भी अभियान पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें। रिपीट, तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जल की प्रत्येक बूंद को बचाएंगे और जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि सच यही है, पानी को सहेजना ही आने वाली पीढ़ियों को बचाना है और जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। भारत की भूमि और मौसम दोनों हमें संदेश दे रहे हैं, पौधरोपण की तैयारी करें। वर्षा प्रारंभ होने पर पौधरोपण से विश्व पर्यावरण दिवस सफल और सफल होगा। आजकल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन एनडीए सरकार के 12 साल की उपलब्धियों और पर्यावरण पर केंद्रित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है बैतूल जिले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में बैतूल जिले में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। पेश है बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की यह रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में बैतूल जिले में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं ने लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैतूल जिले की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के उन्नयन एवं 4-लेन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इटारसी बैतूल नागपुर कॉरिडोर के विकास से जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। हाल ही में इटारसी बैतूल खंड के लगभग 22 किलोमीटर 4-लेन निर्माण के लिए 758 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले के सैकड़ों गाँवों में को सर्व मौसमी सड़कों से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाजार तक पहुंच आसान हुई है। केंद्र सरकार ने इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की। लगभग 297 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का सीधा लाभ बैतूल जिले को मिलेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर माल परिवहन, यात्री सुविधाओं तथा औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बैतूल घोड़ाडोंगरी, आमला एवं मुलताई क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: हमारी दूसरी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पेड़ माह के नाम अभियान 2.0 का शुभारंभ पौधारोपण कर किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान।
2: भोपाल जिले में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के कुशाभाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माह

0: बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज्यादा उल्लेखनीय। हम सबको मालूम है कि चिंता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए सीटे धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्वसाहट का एक कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान।
2: हमारी अगली खबर है भिंड से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा।
3: भिंड जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम जिले भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में कलेक्टर भिंड ने शासकीय महाविद्यालय मेघा परिसर में लगभग 700 पौधे तथा नवीन तहसील परिसर मेघाव में लगभग 200 पौधे का रोपण किया। कलेक्टर ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है उससे बड़ा करना ही उतना ही आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
2: अब हम चलते हैं बालाघाट जिले की तरफ, जहां पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में जिले की संस्थाओं को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
4: बालाघाट जिले की 3 संस्थाओं का प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना जिले के पर्यावरणीय जागरूकता, औद्योगिक उत्कृष्टता तथा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश के कुल 11 पुरस्कारों में से 3 प्रथम पुरस्कार बालाघाट जिले को मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया है। प्रदेश की लगभग 3000 से अधिक बड़ी उद्योग इकाइयों के बीच अति प्रदूषणकारी उद्योग श्रेणी में संचालित बालाघाट जिले के वारासिवनी विकासखंड अंतर्गत ग्राम खापा स्थित विशाग बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इस ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र को उत्कृष्ट पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा सर्वोत्तम पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रदेश का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में बालाघाट जिले की रमरमा खदान को भी पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत खनन गतिविधियों के लिए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ खदान के रूप में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं लघु उद्योग श्रेणी में बालाघाट जिले की केसर एग्रोटेक को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार द्वारा भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
2: हमारी अगली खबर है अनूपपुर जिले से, जहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमरकंटक के शंभू धारा में 5 राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्र।
5: 5वें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनूपपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक और जिला स्तरीय आयोजन पवित्र नगरी अमरकंटक के शंभू धारा में वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 5 राज्यों से आए एनसीसी कैडेट ने वृक्षारोपण किया। तो दूसरी तरफ बिजरी में मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में पौधरोपण का कार्यक्रम बिजरी नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया। तो राजेंद्रग्राम के झूला नदी में शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की उपस्थिति में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में तालाब, प्राकृतिक जल स्रोतों में भी सफाई अभियान चलाया गया। वहीं नगरीय निकायों में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल अपने संदेश में कहा कि
6: विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर बिजुरी नगर के सरस्वती शिशु मंदिर व नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ही कुर्जा हनुमान मंदिर रोड में नव निर्मित पार्क में व कपिल धारा कॉलोनी के शिव मंदिर प्रांगण में मेरे द्वारा व नगर पालिका अध्यक्ष व परिषद के सभी सदस्यों के साथ वृक्ष रोपण किया गया।
5: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं आगर मालवा जिले की तरफ, जहां स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान थीम पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा।
7: जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण, जल कल्याण शिविर, साइकिल

0: साइकिल राइडिंग, जैविक खेती एवं योग गतिविधियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित नमो वन में 500 पौधों का रोपण हुआ। वहीं जिला जेल, न्यायालय परिसर, महाविद्यालयों के साथ ही ब्लॉक स्तर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता गतिविधियां एवं विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन भी हुए। 7 जून को जिले के सभी विकास खंडों में साइकिल राइड एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। वहीं 12 से 18 जून तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाकर सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण तथा केंद्र एवं राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
1: और अगली खबर है छतरपुर से। जिले में 586 ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नौगांव सटई में पौधारोपण किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। पेश है छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे की यह रिपोर्ट।
2: छतरपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस एक बृहद अभियान के रूप में मनाया गया। छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत में पर्यावरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी पर्यावरण दिवस पर छतरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सफलतम 12 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई एवं नौगांव के केंद्रीय विद्यालय परिसर और सिविल अस्पताल में 11-11 पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्ष की देखभाल अपनी संतान की तरह करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे।
1: समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है बड़वानी से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में पौधारोपण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया।
3: पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन बड़वानी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया। नगर वन बड़वानी तथा पांचेमल के अंतर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत श्रमदान कर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर बड़वानी, डीएफओ बड़वानी तथा सेंधवा सहित अधिकारीगण, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि
4: हमारे जिले में भी इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय नगर वन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी आपको है, और दूसरा कार्यक्रम हम लोग पांचसेमल जनपद में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस का संदेश देने के लिए हम लोग श्रमदान और गड्ढे खोदना और वृक्षारोपण इत्यादि का काम करेंगे।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
1: हमारी अगली खबर है बुरहानपुर जिले से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के तहत साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की गई। नेहरू नगर स्थित सद्भावना मंडपम परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर।
5: विश्व पर्यावरण दिवस के तहत बुरहानपुर जिले में साप्ताहिक अभियान शुरू है। नेहरू नगर स्थित सद्भावना मंडपम परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान जामुन, त्रिवेणी, आम, नीम, गुड़हल, अशोक और पीपल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया गया। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है तथा नागरिकों से पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण का आह्वान किया गया। महापौर माधुरी पटेल ने वर्षा जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज की सहभागिता को जरूरी बताया। कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है अशोकनगर जिले से, जहां लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन्मदिवस पर और कार्यक्रमों में पुरस्कार के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं तथा उन्हें रोपने और संरक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला।
6: अशोकनगर जिले में लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। शासन स्तर पर पर्यावरण को बचाने के कार्य किए जा रहे हैं। शासन द्वारा योजना बनाकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण करने को लेकर जल संरचना बनाने तथा बहते हुए पानी को रोकने के प्रयास मानसून आने से पूर्व कर लिए गए हैं। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं भी इस पर कार्य कर रही

0: तथा पौधरोपण करने के उपरांत उसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी के नेतृत्व में कई पंचायतों में पौधरोपण किया गया। जिले में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन्म दिवस पर और कार्यक्रमों में पुरस्कार वितरण पर पुरस्कार के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं तथा उन्हें रोपने और संरक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आज की सभा के शेष प्रसारण की जानकारी आपको दे दें। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा में आज का आकर्षण होगा लोक रंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में रात 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पर किसान सशक्तिकरण का प्रसारण होगा। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 पर प्रसारित करेंगे। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रसिक लाल अंधारिया का ख्याल गायन होगा। राग होगा दरबारी कानड़ा। ये थी जानकारी आज की इस सभा के शेष प्रसारण की। और अब संक्षिप्त रूपरेखा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पहले आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण की जानकारी। दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होगा सुबह 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर सुनिएगा राजेंद्र काचरू के गाए कुछ भजन। शब्द सागर कार्यक्रम में दीपक पगारे की वार्ता का विषय होगा हिंदी पत्रकारिता 2 सदियों का सफर और डॉक्टर चित्रा सिंह का काव्य पाठ होगा। प्रसारण समय सुबह 9:30 का। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10:00 प्रसारित होगी। कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे गीत सागर प्रोग्राम में सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर रविंद्र गरुड़ का बांसुरी पर बजाया राग भैरव आप सुनेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में डॉक्टर सतीश कुमार परसाई से समेकित कृषि प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण की। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे का प्रसारण होगा। आपकी फरमाइश कार्यक्रम मध्यान्ह 12:00 और दोपहर 2:30 पर। मध्यान्ह 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक जंग लगी तलवार की 4वीं कड़ी। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर प्रसारित होगा। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित होगा। शाम 6:30 पर विशेष कार्यक्रम एनडीए सरकार 12 साल प्रसारित करेंगे। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आर्थिक विकास का प्रसारण रात्रि 8:00 आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशा में महफिले समा का प्रसारण करेंगे। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन होगा। राग होगा मारू बिहाग। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
7: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
8: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
7: कहाँ
9: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
7: आरबीआई कहता है।
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए वीरता पुरस्कार। इंदौर में कल से शुरू होगा ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और कृषि मंत्रियों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कल से देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकें इंदौर में कल से शुरू होंगी, जो 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि खाद्य हानि और अपव्यय आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के प्रयासों समेत कई अन्य विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
12: खाद्य हानि और अपव्यय, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। उस पर एक चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करे, अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, वो आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे।
11: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पेश है

0: एक रिपोर्ट।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के दो उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल शनिवार को पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अर्पणा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक HPV टीकाकरण किया जा चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 1,00,000 से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से उनके पारिश्रमिक में 4.46% की वृद्धि लागू होगी। नीमच में 11 जून को ITI पंजीयन मेला एवं करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमर शहीद बिरसा मुंडा बलिदान दिवस स्मरणोत्सव के तहत कल शहीद भवन भोपाल में निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम बिछुआ में नल जल योजना का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया। शिवपुरी जिले की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 अगस्त 2026 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और बैतूल के सारणी और घोड़ाडोंगरी के पूर्व सैनिकों की बैठक कल सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
0: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कुछ ही देर में।
7: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं, क्योंकि भैया खेती किसानी से जुड़े हैं अपन, और खेती किसानी को काम काज घर में बैठ के तो होते नहीं है, ई के लाने भैया अपन को घर से बाहर निकलने पड़ते हैं। और इस समय मौसम तो आप देख ही रहे भैया, धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर घर में अपन बैठ जाएँ तो बाहर निकलने को मन नहीं करता है। लेकिन अपन को घर गृहस्थी के कामकाज और हाट बाज़ार के कामकाज के लाने घर से तो निकलना ही पड़ता है। तो मौसम को देखते भाई, थोड़े अगर अपन सावधानी रखें तो अपन मौसम से भी बचाव रख सकते हैं और मौसम को आनंद भी ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो है कि अगर अपन को दिन के समय कोनो काम के लाने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाए तो सबसे ज़रूरी तो ध्यान रखें कि अगर अपन ठंडी हवा में कूलर या एसी में बैठे हैं तो भैया तत्काल अपन को नहीं निकलने हैं, अपन को थोड़ा सा रुकने हैं और उसके बाद घर से बाहर जाने हैं। और ना ही एकदम से अगर अपन धूप से आ रहे हैं तो अपन को ठंडी हवा में बैठने हैं, क्योंकि भैया शरीर को तापमान एकदम से बदल नहीं पाते हो, तो इससे अपन को तबीयत भी ख़राब हो सकता है। और एक बार अगर अपना स्वास्थ्य ख़राब हो या तबीयत ख़राब भाई, तो ना तो अपने खेती किसानी के कामकाज सही समय पर हो पें और ना ही अपनी घर गृहस्थी और हाट बाज़ार के काम। तो ई के लाने थोड़ा सा अपन को बचाव और सावधानी जरूर रखने हैं। और मौसम को देखते हुए भैया अपने खान पान में भी थोड़ा बदलाव कर लें, क्योंकि इस समय गर्मी भी है और पसीना भी शरीर से बहुत निकल रहा है। और पसीना से याद आओ भैया कि अपन अगर नियमित अंतराल पर पानी पियत रहे तो जब मान लो कि अपन को कमी जो पानी की है वो शरीर में अपन को पूर्ति भी हो सकता है और एक लाने अच्छे भी हैं। और संगे संगे भैया अगर अपने छोटे लड़का बेटियाँ हैं तो उनको तो अपन को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अपन देखा था कि घर में कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो, बच्चा कमरा में खेल रहे हैं, कमरा से भैया तुरंत बाहर निकल के भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उन पर नज़र रखें और उनको अगर वो घर में है कमरा में तो बाहर निकल के से थोड़ा रोकें, क्योंकि भैया बच्चन के शरीर में भी अगर तापमान बदल गया और नहीं बदल पाए तो भैया बेबी बीमार भी हो सकते हैं। और ऐसे ही अपने ढोर बछेरू हैं भैया, अपने जो चौपे हैं, क्योंकि अपनी आय को अतिरिक्त साधन भी यही हैं खेती किसानी में। तो भैया ऐसा है कि अपन को एक निश्चित समय के बाद अपन को आमदनी होते हैं, लेकिन अपने जो ढोर बछेरू हैं, जो अपने पशुधन हैं, उसे अपन को दूध के माध्यम से अतिरिक्त आय भी हो जाते हैं और उनको बेच के भैया अपन को थोड़ी और अतिरिक्त आय भी हो जाते हैं। तो इनको भी अपन को ध्यान रखना है। जैसे मौसम को असर अपन पे होते हैं, वैसे ही मौसम को असर भैया उन पे भी होते हैं। तो उनको गर्मी के मौसम में हो सके अगर पानी की उपलब्धता है तो एक दो बार दिन में ज़रूर नहा दें और छाए में बांधें और गर्म बिल्कुल हवा ना लगे, एक लाने टाट के पर्दा भी लगा दें। जो छोटी छोटी बातें हैं अगर भैया उनको अपन ध्यान रखें तो अपन स्वयं भी अपनों ध्यान रख सकते हैं, अपने पशुधन को भी ध्यान रख सकते हैं और मौसम को आनंद भी ले सकते हैं। भैया देखो, आज का विशेष भी है, काहे की बात है, आज है सोमवार और सोमवार को भैया हम अपने किसान भैया के लाने लाते हैं उनकी पसंद को कार्यक्रम लोक माधुरी। तो भैया हम आपको पहले सुनवा देते हैं अंशुना सक्सेना के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भैया देखो, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवादित हैं कृतिंद्र सिंह सूर्यवंशी की स्वर में, जो उन्होंने सोलोगीत और जलोगीत की फरमाइश हमको करी है। प्रमिलागंज आलोड जिला रतला मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और उनके परिवार के सभी सदन, और संग संग भैया भटिंडा रोड डडवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। तो सुन लेते भैया उनकी फरमाइश को, जो उन्होंने तो लोकगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँच

0: पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

भैया देखो, अबे आप सुन रहे थे कांशीराम अहिरवार के स्वर में, जो उन्होंने सो राय लोकगीत और या लोकगीत की फरमाइश हमको करी थी अमलतास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय और उनके परिवार के सभी सदस्य। अब भैया हम आपको सुनवा देते हैं महेंद्र सिंह के स्वर में, जो उन्होंने सो लोकगीत और जो लोकगीत की फरमाइश हमें करी है, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बाबड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिताबाई भारतीय और संगे संगे भैया ग्राम बिडोला तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, मानवी गुर्जर, नैना गुर्जर, नंदिनी गुर्जर और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो भैया सुन लेते हैं उनकी फरमाइश को, जो उन्होंने सुनो लोकगीत।

भैया देखो अभी आपने सुनो महेंद्र सिंह के स्वर में जो 900 चेतावनी लोकगीत और जो लोकगीत की फरमाइश हमें करी थी लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपतु साहू और रागनी भारापाटा छत्तीसगढ़ से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, अहमदाबाद तुलसी हॉस्पिटल, मोदी हॉस्पिटल, काजल कारण, भारती आरती, श्रीमती सिनेमा देवी, प्रियंका चोपड़ा, प्रियांशु, राजू ऑपरेटर और आयुषी और समस्त रमटोरिया परिवार। तो भैया आपने सुनो इनकी फरमाइश को जो 900 लोकगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भैया देखो, स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारा कर रही है, हम अपने सभी श्रोता भैया से लेना है विदा। तो चलते हैं सभी श्रोता भैया को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: प्रभुदत्त मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट, मॉडरेटर इज सोनू सूद।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार में MSP और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: Over the past 12 years, empowering India's Andatas, agricultural policy has widened its scope beyond welfare support to focus on structural and sustainable reforms which have strengthened productivity, income security, market access, modern infrastructure and institutional resilience. Record agricultural output, smart irrigation, easier credit, stronger insurance coverage and surged agricultural exports and allied sectors have empowered the farmers like never before, moving towards a more diversified, technology-driven and farmer-centric agricultural ecosystem. To discuss the various aspects of this robust 12-year journey of farmers' empowerment, the targeted interventions at the policy level, we have with us three distinguished guests: Mr. Binod Anand, member of government's high-powered committee on MSP and agricultural reforms, and senior journalists Mr. KV Prasad and Mr. Prabhudat Mishra. A warm welcome to you gentlemen on Akashvani.
3: Thank you very much.
4: Thank you. Namaskar.
2: So we start with you, Mr. Anand. You know, the kind of transformational changes that we have seen in Indian agriculture over the past 12 years, the way the agricultural production has gone up, the productivity has grown by leaps and bounds, the exports have shown very, very robust figures. Can you tell us, according to you, what are the three major areas of the agricultural ecosystem which you feel have received the maximum reforms, the most significant and the most crucial reforms in these 12 years?
4: Certainly. Many thanks for inviting me on this very visionary program we have completed these many years. You see, the thing is that the investment in agricultural and structural reforms in all the sectors, this has given a new different kind of arrangements. GVA especially, which is called the gross value in agriculture, that's in 2014-15, when the government has started this government, it was merely 20.9 lakh crore. Around 21 lakh crore, we can say. Today, it is pumping 49 lakh crore. So, it's almost 2.5 times. MSP, we have seen that whatever the previous government has done, 2.5 times of that government is already invested in MSP. There are five commandments over which the structural reform has taken place. First is how to beyond welfare points, that is adding farmers' welfare in the ministry name as per the recommendation of the Swaminathan Committee. The strengthening productivity, income security, the market access given, the kind of infrastructural reforms and institutional resilience. So over these five commandments, government has done a lot of activities. I will go one by one for them, for the better understanding of what has been done. You see, in 2014, they started with a Rashtriya Gokul Mission. Thereafter, right. Certainly there are two different ministries has been carved out. A fisheries department have been separated. But when there are Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Soil Health Card Scheme, what the government has thought about in 2016. And the most important one where we need to take a pause is a National Agriculture Market, that is Enam Mission. So through Enam, there is spot market is very active and millions of farmers and thousands of businessmen, especially the Adatiyas, are registered over there and doing seamless businesses. Minimum support price we must have seen, while in 2018 it was 0.1, 0.5 times it has gone up, whatever the recommendations were from A2 plus FL. So these are the few different kind of initiative has taken. The most important among them was the creation of Ministry of Cooperation, where all sort of Sahakar Se Samriddhi has been taken up. Three different multi-state cooperative has been created. One to create an export system, second to create organic farming ecosystem, and third, which is a very important one, to make the export market very robust. So that from the diversification to aligned activities to bioenergy and to creating additional income opportunity, a resilient and integrated agriculture system, this kind of structural reforms have given a big flip. And whatever you are watching at this moment, this year, that's a mission for Atmanirbhar in pulses. So these are a few visionary steps which earlier has not been taken up. And these all schemes, what I'm talking about, is administratively quite implementable, and it is environmentally sustainable, economically viable, and most importantly, farmer-centric, and very well diverse and technology-driven. So this is what, in the first response, I have given to you.
2: So Mr. Anand has so extensively outlined the various path-breaking changes which have taken place in these 12 years and what they really mean for the agriculture sector in a nutshell. If we come to you, Mr. Prasad, what do you think are the three most important initiatives of the government in these 12 years which really leap out, which you feel have transformed the Indian agriculture ecosystem and empowered the annadatas of our country and moved our country towards food security?
3: Sunilji, all of us do realize that agriculture is the backbone of a large section of a society. Depends almost 60% of the population is in this sector. It is own contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said it's much more what the population of Africa. I mean, so they said we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country, and in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is draw more crop, which is talking of micro irrigation drip. And this has been again going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000 when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then I think Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
2: Yes.
3: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. Yes. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting this particular sector.
2: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
5: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
2: जी,
5: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके MSP डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा MSP से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो MSP से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में MSP नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में MSP से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, MSP से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है MSP पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो MSP से ऊपर है या MSP के बराबर के पोजीशन में है,
2: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
5: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीज़ें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
2: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर है सरकार की, उसमें MSP पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को MSP के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
4: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल MSP वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने MSP के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की MSP थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे

0: अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है।
1: जी
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं और गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक

0: कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री के

0: कहा गया था, हमारे यहां अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वही डिजिटाइज्ड है। यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथेन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग हैं सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये
1: जी
0: तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात ये है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए। ये
1: जी
0: फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है।

0: वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं, और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का, तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट, हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 इयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
0: सी, फर्टिलाइजर इन इंडिया इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिया पर्टिकुलरली। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट रेज्ड द प्राइस फॉर पास्ट टू डिकेड्स और सो, एंड यूरिया करेंटली इज अवेलेबल एट 267 रुपीज पर बैग ऑफ 45 kg। लास्ट इंटरनेशनल प्राइस एट व्हिच इंडिया बॉट यूरिया वाज $954 पर टन। So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, and it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन

0: रहे थे, मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत किसान सशक्तिकरण का ये प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सीता और गीता फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मन्ना डे ने गाया है। आनंद बख्शी का लिखा, धुन आरडी बर्मन की।

किशोर कुमार और महेंद्र कुमार कपूर का गाया विक्टोरिया नंबर 203 का गीत। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने तर्ज बनाई।

0: किशोर कुमार और महेंद्र कपूर के गाए फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की एक सूचना आपको दे दें। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

0: ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in या hopaiarbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन EIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताज़ा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि

से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थयात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें career

0: afcat.edcil.co.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी हैज सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी फॉर जनरेशंस।
1: आज से 90 साल पहले
2: सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो 90 इयर्स अगो आकाशवाणी हैज रिमेन्ड द हार्टबीट ऑफ इट्स लिसनर एंड ऑफ द नेशन एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। दो एवरी मीडियम आकाशवाणी हैज कंटिन्यूड टू प्रोवाइड न्यूज इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इन द वॉइसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
1: समाचार सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: India recorded the biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off Test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Barraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस अहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस अहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जम्हूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जन इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय

0: हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की, या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
1: जी।
0: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, अच्छी तरह रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी, और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ में लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी
1: हो। जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
1: जी।
0: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सभी मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारा खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पर भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस जो कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है,
4: कमी हो जाती
3: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
4: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
5: जी नमस्कार, मैं राकेश
4: जी,
5: राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: धन्यवाद
5: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
4: डॉक्टर मीना,
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं, और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, और इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा, तो
4: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर
3: बहुत जरूरी है
4: किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
6: जी नमस्ते।
4: नमस्ते
6: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
4: जी जी,
6: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
4: डॉक्टर डबा,
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
4: डॉक्टर दबास की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो।
7: हेलो
4: जी अनिल जी।
7: मैम हमारे सवाल ये है
2: कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को

0: कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके तक की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
1: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उसे केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
2: उत्तर प्रदेश की मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए, कितनी गहरी ली जाए?
2: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी वे सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
2: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर श्रोताओं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको

0: वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है, और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है। यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है, मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम वो उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते हैं तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा, और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत

0: तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूँ में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी का भी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रमान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे वो ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहाँ कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 0112584 1670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय

0: उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो अभी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर हम हिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है, उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
2: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
2: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
2: जी, जो शहर का बेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है, जब हम उसको सही हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है, और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है, तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझे, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
3: नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और पहला पत्र शामिल कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। दूसरा पत्र हमने लिया है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका परिवार। छत्तीसगढ़ बनियापारा से रामचंद्र माखीजा काफे, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और माखीजा परिवार। सुनना पसंद किया है एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत, मुकेश और आशा भोसले का गाया। एसएच बिहारी ने गीत लिखा है, ओपी नैयर ने धुन बनाई।

अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और बामनिया परिवार के सदस्य। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत, डॉडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान की। ठोकर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। सजन दहलवी।

कार्यक्रम में अगला गीत है पाकिज़ा से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है, कैफ भोपाली ने गीत लिखा है और गुलाम मोहम्मद का संगीत है। सुनना पसंद किया है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से लिखते हैं, गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले की, कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर देवे, रमाताई डोंगर देवे, सीमाताई रीमाताई डोंगर देवे, दीक्षा और राहुल डोंगर देवे।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सदस्य। सच्चा झूठा फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी का गाया, इंदिवर ने गीत लिखा है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अगले गीत की ख्वाहिश भेजी है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मती पंचोलिया ने। उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा ने। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। मिंडगी रोड से राघु सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत और अभिषेक कुमावत ने। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। सुनना पसंद किया है द ट्रेन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने गीत लिखा।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कोटवा नारायणपुर से, बाबा पट्टी बलिया से ये खत है। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। दुबिहा नवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ खान, शाहिद खान। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। जूली फिल्म का गीत किशोर कुमार का गाया, राजेश रोशन ने धुन बनाई, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है।

किशोर कुमार के गाए फिल्म जूली के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए रसिकलाल अंधारिया का ख्याल गायन। राग है दरबारी कानड़ा। विलंबित ख्याल झप ताल में और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबला संगतकार इस्लाम दद्दुखार और सारंगी पर संगत अब्दुल लतीफ खान की।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रसिकलाल अंधारिया का ख्याल गायन, राग था दरबारी कान्नड़ा। इनके साथ तबला पर संगत की इस्माइल दद्दू खान ने और सारंगी संगतकार थे अब्दुल लतीफ खान। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष

0: 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।